हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं दी संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भी संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

91.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: नमस्कार
1: वत्सल साहब, आइए आइए आइए।
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए।
1: डोनेशन? जरूर जरूर, कहाँ है डोनेशन बॉक्स?
2: ये रहा, मिल गया हमें डोनेशन।
0: ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान।
3: स्विच

0: समझ गए?
1: हाँ हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: रुक जा, ये क्या है? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: या श्योर।
1: आइए सर, आप यही। रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहां प्रेम बचा हो वहां समझो, जहां गलती हो वहां क्षमा करो, लेकिन जहां बार बार तुम्हारा मन टूटे वहां दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
10: ये क्या कर रही है?
11: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
10: ये केले के छिलके की।
12: Oh, no.
11: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
10: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
11: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

0: चलिया।
1: गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन 91.2 FM धर्मशाला। प्रस्तुत है आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुनिए आज की प्रमुख सुर्खियां। मंडियों में प्याज की आवक बढ़ने से कीमतों में करीब 9% तक की गिरावट, आने वाले दिनों में और राहत की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने पेंशनरों के लिए फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा शुरू की। त्योहारों के मौसम में राशन डिपुओं में अगले महीने 1 किलो अतिरिक्त आटा देने की तैयारी। मानव वन्य जीव संघर्ष पर हिमाचल में जल्द बनेगी विशेषज्ञों की टीम। देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के निदेशक ने किया प्रदेश का दौरा। जनगणना -2027 के लिए हिमाचल में घर घर जाकर पूछे जा रहे हैं करीब 40 सवाल। कई जिलों में काम तेजी से आगे बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। प्याज की उपलब्धता संतोषजनक होने और आने वाले महीनों में आपूर्ति और बेहतर होने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 सितंबर से 11 सितंबर के बीच देश की प्रमुख मंडियों में प्याज की औसत मंडी कीमत में गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि में औसत कीमत करीब 3,721 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 3,383 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। सरकार की ओर से प्याज के बफर स्टॉक से भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। इसके तहत बड़ी मात्रा में प्याज देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा गया है। समाचार में यह भी बताया गया है कि महाराष्ट्र सहित प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में मंडियों में आवक बढ़ी है। महाराष्ट्र के कुछ बाजारों में प्याज की औसत कीमत में भी कमी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया को आसान करने की दिशा में फेस रिकॉग्निशन सुविधा शुरू की है। वर्ष 2026 से 2027 का जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 नवंबर 2026 तक पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा और सत्यापित करवा सकेंगे। नई सुविधा के माध्यम से पेंशनर अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। बिजली बोर्ड के अनुसार फेस रिकॉग्निशन तकनीक के माध्यम से पेंशनर की पहचान का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। इससे पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी। चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ या असमर्थ पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। ऐसे पेंशनर संबंधित चिकित्सकीय अधिकारी या डॉक्टर से विधिवत प्रमाणित मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में त्योहारों के मौसम के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी है। अक्टूबर महीने में राशन डिपुओं में आटे का कोटा बढ़ाया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था की तुलना में उपभोक्ताओं को 1 किलो अधिक आटा उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को वर्तमान में निर्धारित मात्रा के अनुसार आटा उपलब्ध करवाया जाता है और त्योहारों के महीने में इसमें बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इसके साथ ही APL परिवारों के लिए आटा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। विभाग की ओर से उपलब्धता और मांग के आधार पर वितरण व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए राशन डिपुओं के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर जल्द ही विशेषज्ञों की टीम गठित किए जाने की तैयारी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून के निदेशक ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और इस विषय पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में विशेषज्ञों की मदद से समस्या के कारणों और संभावित उपायों का अध्ययन किया जाएगा। समाचार में पिछले 3 वर्षों के दौरान भालुओं के हमलों से जुड़े आंकड़ों का भी उल्लेख है। इसके अनुसार प्रदेश में भालुओं के हमलों में घायल लोगों की संख्या 93 बताई गई है। मानव वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता और सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जनगणना -2027 का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों से आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। परिवार और व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े करीब 40 सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बार जनगणना में जाति के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, आय, प्रवास और दिव्यांगता सहित सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में जनगणना का काम चरणबद्ध तरीके से चल रहा है और कई क्षेत्रों में लक्ष्य का बड़ा हिस्सा पूरा किया जा चुका है। शिमला जिले में करीब 65% जनगणना कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई है। प्रशासन की ओर से निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जनगणना से मिलने वाले आंकड़ों का उपयोग भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और अन्य विकास योजनाओं के लिए किया जा सकेगा। जनगणना में जन्म स्थान और प्रवास से संबंधित जानकारी भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा वैवाहिक स्थिति और महिलाओं से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारियां भी दर्ज की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 228 चिकित्सा अधिकारियों जनरल विंग की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 70 बैकलॉग पद और 158 नए पद भरे जाएंगे, जिससे मौजूदा रिक्तियों को भरने के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी मदद मिलेगी। चिकित्सा अधिकारियों के इन पदों को भरने के लिए विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में सहायक प्रोफेसर सुपर स्पेशियलिटी के एक पद को पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। ये उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इसी माह 194 चिकित्सकों की नियुक्ति भी की है, जिनमें 118 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। इन चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा सीनियर रेजिडेंसी की अवधि पूरी करने के उपरांत नियुक्ति दी गई है। इन चिकित्सा अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, क्षेत्रीय व जोनल अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में नियुक्त किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के सचिव आर मेहुल शर्मा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के मार्गदर्शन में मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 3.0 अभियान का आयोजन किया गया है, जो जिला कांगड़ा के समस्त तालुका तथा जिला न्यायालयों में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों सुलह एवं मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र, सरल और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना मामले, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण व अन्य उपयुक्त नागरिक मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जा रहा है। आर मेहुल शर्मा ने बताया कि मध्यस्थता एक ऐसा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से पक्षकार आपसी सहमति एवं बातचीत के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करते हैं, और यह प्रक्रिया पूर्णतया गोपनीय, कम खर्चीली और समय बचत करने वाली होती है। इससे पक्षकार के बीच संबंध भी बने रहते हैं और न्यायालयों में लंबित मामलों का भार भी कम होता है। उन्होंने लोगों से इस अभियान लाभ उठाने की अपील की है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जिला कांगड़ा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक कांगड़ा पुरुषोत्तम सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिले के विभिन्न विकास खंडों में उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी है। उन्होंने बताया कि विकास खंड धर्मशाला के अंतर्गत ग्राम पंचायत कजलोट के गांव कालापुल, बगली पंचायत के वार्ड नंबर 5 तथा धर्मशाला नगर निगम के वार्ड नंबर 4, 7 और 10 में उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसी प्रकार कांगड़ा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत हलेड़ खुर्द के गांव छोटी हलेड़, रैत विकास खंड की पंचायत मैटी के गांव बंगरेहड़, बैजनाथ विकास खंड की पंचायत क्योरी के वार्ड नंबर 2 तथा मझोटी पंचायत के गांव महलादान पत्थर, पंचरुखी विकास खंड की पंचायत लदोह और परागपुर विकास खंड की पंचायत कुहना के गांव चमेटी में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी है। उन्होंने बताया कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। सहकारी सभा, स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल अथवा अन्य पात्र संस्थाओं के लिए आवेदन के साथ संबंधित पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: वत्सल साहब, आइए आइए आइए।
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए।
1: डोनेशन? जरूर जरूर, कहाँ है डोनेशन बॉक्स?
2: ये रहा, मिल गया हमें डोनेशन।
0: ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान।

0: समझ गए?
1: हाँ हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फते आप पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
2: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़े, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
3: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
4: कब देवी?
3: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
4: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
3: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
4: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
3: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
4: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
3: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
4: नहीं देवी, जहां प्रेम बचा हो वहां समझो, जहां गलती हो वहां क्षमा करो, लेकिन जहां बार बार तुम्हारा मन टूटे वहां दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
5: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
6: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
7: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और तेल।
8: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
6: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें?
7: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
9: ये क्या कर रही है?
10: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
9: ये केले के छिलके की?
11: ओह नो,
10: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
9: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
10: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है तो पिछले 2 दिन

92.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

तो श्रोताओ, ये लाइव कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हम रहेंगे आपके साथ अभी से लेकर के 11 बजे तक, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि इस वक्त हम अपने फेसबुक पेज से भी लाइव आपके समक्ष आ चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज से भी, और 88.4 मेगाहर्ट्ज हमीरपुर में डटवाल की आवाज से भी सभी श्रोताओं का स्वागत। फिलहाल हम 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के स्टूडियो में हैं। तो श्रोताओं, हम पहुंच गए हैं 18 सितंबर में, और आज दिन है शुक्रवार का, और इतनी प्यारी सुबह देने के लिए हम उस ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सुन रहे हैं आप ये बांसुरी की धुन। जी हाँ, आज सारे कार्यक्रम में बस ऐसी ही धुनें आपको सुनाने वाले हैं हम, और वो क्यों, उसके पीछे एक कारण है भाई। उस कारण को तो हम बाद में जानेंगे, फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के विचार से। विचार थोड़ा सा लंबा है श्रोताओं। बांस की अपनी कोई धुन नहीं होती है, वो अंदर से एकदम खाली होता है, खोखला होता है, लेकिन जब उसमें सुर फूंके जाते हैं तो वो बांसुरी बनकर के दुनिया को मंत्र मुग्ध कर देता है। और इंसान का जीवन भी तो ऐसा ही है। कितने अहंकार, जितने अहंकारों से आप खाली रहेंगे, जिंदगी उतनी ही मधुर धुन गाएगी। तो ये बांसुरी जिसके हाथों में होती है, चलिए उसी से संबंधित एक गीत भी सुन लेते हैं। कार्यक्रम का ये रहा आप सभी के रेडियो सेट्स पर पहला गीत।

श्रोताओं, हमें पिछले कार्यक्रम में किसी श्रोता ने ये अवगत करवाया था कि ये राग भैरवी के जो गीत होते हैं ना, ये बड़े ही प्यारे से होते हैं। और हाँ, ये जो आप गीत सुन रहे हैं इस वक्त अपने रेडियो सेट्स पर, ये भी राग भैरवी पर ही आधारित है। राग भैरवी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा अनमोल रत्न जिसे कि रागों की रानी भी कहा जाता है।

राग भैरवी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें रे यानी ऋषभ, ग यानी गांधार और ध यानी धैवत और नी यानी निषाद, ये चारों स्वर कोमल लगते हैं। और संगीत की भाषा में इसे सदा सुहागिन राग भी कहते हैं, क्योंकि इसके सुर इतने मधुर हैं कि ये सीधे सीधे दिल को छूते हैं। और शास्त्रीय संगीत के नियमों के अनुसार राग भैरवी को गाने का सही समय प्रातःकाल यानी सुबह सुबह का वक्त होता है, लेकिन इसकी एक और भी खासियत है कि शास्त्रीय संगीत की महफिलों का समापन हमेशा इसी राग से होता है।

तो हमने आपको बताया कि शास्त्रीय संगीत की महफिलों का समापन हमेशा इसी राग से होता है, चाहे फिर वो महफिल रात के किसी भी पहर पर खत्म हो रही हो। यानी कि ये विदाई का राग भी है और नई शुरुआत का भी। और भैरवी सिर्फ एक राग नहीं है, एक भावना भी है। इसमें भक्ति, श्रृंगार, करुणा और थोड़ी सी विरह वेदना भी छिपी हुई है। और यही वजह है कि जब ये गीत आप सुनते हैं तो उसमें राधा की नटखट श्याम के प्रति शिकायतें भी हैं और अगाध प्रेम भी।

संगीत के शौकीनों के लिए एक और दिलचस्प बात यह है कि ये मशहूर गीत 8 मात्राओं की कहरवा ताल पर पिरोया गया, जो कि इसकी लय को और भी चंचल और आनंदमयी बना देता है।

श्रोताओं, हमारा तो मन कर रहा था कि हम इस गीत को यूं ही सुनते ही रहें, बस ऐसे ही चलता रहे और हम इसमें खोए रहें। और वैसे भी श्रोताओं, आजकल हमारे आसपास में जहाँ पर भी आप चले जाते हैं, वहाँ पर एक अलग ही माहौल सा बना हुआ है, भक्तिमय माहौल हमारे आजकल आसपास में बना हुआ है। जगह जगह पे गणपति जी के पांडाल लगे हुए हैं और वहाँ पर जब आप जाते हैं तो एक अलग ही दिल को सुकून सा मिलता है। कार्यक्रम में हमें और बहुत सारी बातें आपसे आगे भी करनी हैं। फिलहाल हम मौसम की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

तो मौसम का हालचाल बता देती हूँ। धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान इस समय बना हुआ है, गूगल बाबा जी जो हमको दिखा रहे हैं, वो है 26 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लोगों के यहाँ पर कुछ और दिखा रहा हो तो कृपया करके हमें क्षमा करें, क्योंकि हमारे स्टूडियो में यही मौसम, यही तापमान दिखाया जा रहा है। हवा में नमी है 55%।

और अगर बारिश की संभावना की बात करें, आज तो आज 0 से 15% बारिश की संभावना है, यानी कि बस 9 के बराबर। और पूरा दिन धूप खिली रहेगी ऐसा अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं ये है धर्मशाला और धर्मशाला के मौसम का कुछ पता लगता नहीं। चलिए मौसम का ही एक गीत सुन लेते हैं।

जुदाई फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में प्रादेशिक समाचारों का।

उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा।

लौटा लिए चलते हैं ना, और छोटी छोटी सी चीजें याद दिलाते हैं, जैसे कि आज हम आपको बांसुरी की याद दिला रहे हैं। और बांसुरी की याद क्यों की जा रही है वो भी कार्यक्रम में आगे बताऊंगी भाई, आपको इंतजार करना होगा धीरे धीरे मेरे इस पिटारे के खुलने का।

तो सबसे पहले तो आज है राधा अष्टमी, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो आज राधा अष्टमी की। और आज क्षमा कीजिए, राधा अष्टमी कल है।

और उसकी तैयारियों में भी आप तो लग ही गए होंगे। आज है 18 सितंबर। थोड़ा सा कंफ्यूजन रह रहा है क्योंकि कल भी मुझे आपसे मिलने के लिए आना है श्रोताओं, तो इंतजार जरूर कीजिएगा। तो आज बहुत सारे दिवस हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है समान वेतन दिवस, विश्व जल निगरानी दिवस। एक एक करके हम सभी दिवसों पर बात करने वाले हैं। और अब उस दिवस के बारे में बात करती हूँ जिसके कारण अभी आप ये बांसुरी की धुन लगातार सुबह से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज है विश्व बांस दिवस। बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है।

और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये बांसुरी की धुन जो है वो आज बहुत मीठी मीठी सी पसंद आ रही होगी। पीछे हमारे जो उत्सव चले हुए हैं उस पर भी ये बहुत सटीक बैठती है। और जब मैंने कल की बात की कि कल राधा अष्टमी है, तो आज हम राधा कृष्ण की बात भी करेंगे कार्यक्रम में, सीधे सीधे तौर पे नहीं, तो कुछ इस तरह से कि आप समझ जाएं कि बात तो उन्हीं की हो रही है। तो चलिए कार्यक्रम में गीत सुन लेते हैं। फिल्म का नाम है राधा का संगम, गायक कलाकार लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार।

तो कैसा लगा गीत आपको श्रोताओं? जी, राधा और श्याम का ये खूबसूरत सा जो गीत है ना, सच में मन में जो है हिलोरे ले आता है और हम पता नहीं न जाने कौन सी दुनिया में खो जाते हैं जाकर के।

तो ये तो हमने बता दिया आपको कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आज के दिन हम मना रहे हैं। परंतु भारत में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी आज के दिवस, मतलब आज की तारीख में। दिवस तो हर दिन हम रोज नया ही मनाते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कार्यक्रम में भी हमने आपसे बात की थी कि हर दिन रोज नया चैप्टर होता है जो कि ब्लैंक होता है, जिसे हमें सुबह से लिखना शुरू करना होता है और फिर वही आखिर में हमारी जिंदगी की किताब बन जाता है। और जैसा कि हमें याद है, हमारे एक श्रोता अनिल जी ने कहा था कि बस केवल दो उस चैप्टर, उस पूरी किताब के जो दो हिस्से हैं वो ही ईश्वर ने अपने हाथ में रखे हैं। एक है पहला, जब आपका जन्म हुआ, और एक दूसरा जब हम ये दुनिया छोड़ करके जाएंगे। और उसके बीच में हम क्या लिखते हैं वो हमारे ही हाथ में होता है। आप खुद भी अच्छा अच्छा लिखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि किस तरह से इस जीवन की किताब को लिखा जाता है। चलिए अब 18 सितंबर पर चलते हैं। 18 सितंबर 1995 में हिंदी व्यंग्यकार और हास्य कवि काका हाथरसी जो रहे, उनका जन्म हुआ था। उनकी जन्म जयंती हम आज मना रहे हैं। 18 सितंबर 1950 में जो मंच नाम विष्णुधरन से जाने जाते थे, एक भारतीय अभिनेता थे। उन्होंने मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में काम किया था और साथ ही साथ कभी कभार तमिल, हिंदी, तेलुगु और मलयालम भाषाओं की फिल्मों में भी वो दिखाई दिए। उनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था उपेंद्र राव का, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और राजनीतिज्ञ रहे, जो कि मुख्य रूप से कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं। कुछ तेलुगु फिल्मों भी उन्होंने काम किया है। और प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 1948 में आज की तारीख में हैदराबाद की सेना के आत्मसमर्पण को भारतीय सेना द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ऑपरेशन पोलो समाप्त कर दिया गया था। 2011 में सिक्किम भूकंप के झटके पूर्वोत्तर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और दक्षिणी तिब्बत में महसूस किए गए थे। भारत के जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए 2016 के उरी हमले, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के 19 जवानों और चार हमलावर, इसमें जवान और चार हमलावर मारे गए थे। 2016 की ये बात है, 18 सितंबर।

और भारतीय कवि श्रीकांत वर्मा का जन्म हुआ था 1931 में। ५० में अभिनेत्री शबाना आज़मी का जन्म हुआ था हैदराबाद में। ১৯৮৬ में पहली बार मुंबई की महिला चालकों ने बॉम्बे और गोवा के बीच में जेट विमान उड़ाया था। देखिए ऐसी ऐसी जानकारियां निकल कर आती हैं ना, हर दिन के इतिहास में लिखी गई, तो आज भी जो भी कुछ हम करेंगे ना वो भी इतिहास बन जाएगा। तो आज के दिन को बहुत ध्यान से आप लिखिएगा।

0: गया मन से लिपट अनजाना।
1: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ, कुछ गीत उनमें से ऐसे हैं जो कि बांसुरी की धुन पर भी आधारित हैं, यानी कि उन गीतों में बांसुरी का इस्तेमाल हुआ है। तो आप पहचानेंगे वो गीत और फिर बाद में तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी ही, पर पहले आप पहचानिएगा कौन कौन से वो गीत हैं।

सुन ली आपने भी मुरली की ये धुन। अतरंगी रे फिल्म से ये गीत था और उम्मीद करती हूँ कि जो नृत्य करने वाले लोग थे उन्होंने नृत्य भी कर लिया होगा इस गीत पर। तो ऐसे बहुत सारे गीत आज के कार्यक्रम में मैंने रखे हुए हैं जो कि जिसके मूल में बांसुरी है, क्योंकि श्रोताओं आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और अगर अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम, कोई बात हमसे करना चाहते हैं तो फिलहाल आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज पर आप अपना संदेश छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा या फिर कोई सिंपल मैसेज कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, जिस तरह से भी आप करना चाहें। फोन कॉल भी लेंगे आपकी, लेकिन आपको पता है वो समय, हम फोन कॉल 10 बजे के

0: आशीर्वाद लेते हैं।
1: और बांस के बारे में कुछ कहना चाहें, बांस किस तरह से आपकी जीवन में उपयोगी है या बांस के पेड़ से आप क्या समझते हैं, जरूर हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि ये अत्यंत उपयोगी और चमत्कारी पौधा है, जिसे कि अपनी रिटेल कंपनी के कारण हरा सोना भी कहा जाता है। बांस दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है। कुछ दिनों में 3 फीट तक ये बढ़ सकते हैं। वजन और क्षेत्र के अनुपात में बांस स्टील से भी अधिक मजबूत माना जाता है, क्योंकि इसमें कोलेजन सहने की ताकत ज्यादा होती है। इसका उपयोग कागज, कपड़े, फर्नीचर, घर बनाना, हस्तशिल्प, अगरबत्ती और यहाँ तक कि खाने में भी होता है। बांस के कोमल कोमल जो कोंपले होती हैं या फिर बांस के अंकुर, जी हाँ, उसे इस्तेमाल किया जाता है, आप तो जानते ही हैं, और बनाते भी हैं, है ना, बांस का अचार, और खाते भी तो हैं। भाई मेरी बिटिया को तो बांस का अचार बहुत पसंद है, जब भी आती है बस वो यही कहती है कि बस बांस का अचार ढूंढ करके कहीं से ला दो। एक और विशेष बात कि बांस को उगने के लिए बहुत अधिक पानी या फिर कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि इसे बंजर भूमि पर भी आसानी से पाया जा सकता है, देखा जा सकता है।

0: और भी बातें आपसे करेंगे बांस के बारे में हम जरूर। फिलहाल स्वामी फिल्म का ये गीत सुनिए, यशोदास की आवाज में बड़ा ही प्यारा सा ये गीत है।
1: शिमारू चैनल को सब्सक्राइब

गीत मूल रूप से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहिब की प्रसिद्ध ठुमरी पर आधारित है, जिसे कि राग सिंध भैरवी में परोया गया है। विरह और इंतजार के दर्द को गहराई से दिखाने के लिए गाने के म्यूजिक अरेंजमेंट में बांसुरी यानी फ्लूट और सरोद जैसे वाद्यों को प्रमुखता दी गई है। गाने की शुरुआत और इसके अंतरे के बीच के हिस्सों में बजने वाली बांसुरी की धीमी तान दिल को छू लेती है, तो आप अभी ढूंढिए कि कहाँ इसमें बांसुरी की तान आपको सुनाई दे रही है।

91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और स्वामी फिल्म का गीत अभी आपने सुना यशुदास की मधुर सी आवाज में।

तो ग्रीन गोल्ड कहलाए जाने वाले इस बांस के बारे में हम बात कर रहे थे। आज विश्व बांस दिवस है। तो बांस दिखने में कठोर और लकड़ी जैसा तो होता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये पेड़ नहीं बल्कि एक विशाल घास होती है, ये तो आप सभी जानते ही है ना। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई, इतने लंबे लंबे इसके डंडे होते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे से, तो ये घास कैसे होती है? घास तो बिल्कुल ज़मीन से सटी हुई होती है। जी, ये घास ही होती है। इसमें पेड़ों की तरह छाल नहीं होती, इसका तना हर साल मोटा नहीं होता। बांस का तना सीधा, लंबा और जोड़ों यानी गांठों वाला होता है। इसके जोड़ अंदर से ठोस और जड़ों के बीच का हिस्सा अमूमन खोखला होता है। और पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। अनुकूल परिस्थितियों में तो कुछ प्रजातियां 24 घंटे में 1 मीटर तक बढ़ सकती हैं, यानी कि 36 इंच।

बांस का पौधा अपने पहले वर्ष में ही अधिकतम ऊंचाई छू लेता है, जिसके बाद केवल उसकी शाखाएं निकलती हैं। कई प्रजातियों में उसके जीवन काल यानी 30 से 120 वर्ष तक में केवल एक ही बार फूल और बीज आते हैं, जिसके बाद फिर ये पूरा जंगल एक साथ सूख जाता है। और बहुत सारी बातें जो अभी तक हमने रखी हैं अपने पिटारे में आप सबको बताने के लिए, और भी बहुत सारे दिवस हैं भाई, उनके बारे में भी बात करेंगे हम कार्यक्रम में आगे। फिलहाल हमने आपको बता दिया है कि आज आप किस विषय पर हमसे बात कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

सौदागर फिल्म का गीत अभी आपने सुना 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

तो श्रोताओं, आज बांसुरी की बातें हो रही हैं क्योंकि विश्व बांस दिवस है। और वैसे बांस के ऊपर मैंने गाने बहुत सारे ढूंढे लेकिन मुझे नहीं मिले, एक भी नहीं मिला। बहुत कोशिश की कि बांस पर कोई अच्छा सा गीत मिल जाए, लेकिन हमारी जो फिल्मों की खासियत ये है कि हर विषय पर गीत बनाते हैं, परंतु यही एक बेचारा बांस रह गया, या हम यूँ कहें घास रह गया, गोल्डन सोना भाई, जिसको हरा सोना कह रहे हैं, उस पर भी कोई गीत होना चाहिए ना, लेकिन नहीं था, तो हम बांसुरी के गीत लेकर आए हैं। अच्छे लग रहे हैं ना आपको? बताइएगा ज़रूर, मैसेज कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं। और बज गए हैं 10:10 से ऊपर हो गया है समय, 10:03 हो चुके हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल्स का भी, साथ में ये जानने का कि बांसुरी के विषय में आप क्या समझते हैं, या बांस का जो पौधा है क्या आपके घर के आसपास में लगा हुआ है, और अगर है तो वो आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, या अगर नुकसानदायक भी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं।

तो बांस की विशेषताओं के बारे में आपको मैं बता रही थी। ये सामान्य पेड़ों की तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। इसकी जो जड़ें होती हैं ना, वो रेशेदार होती हैं, आपस में गुथी हुई होती हैं, जो कि मिट्टी को मजबूती से जकड़ करके रखती हैं। ये नदी के तटों और पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव और बाढ़ को रोकने में भी बेहद असरदार होते हैं।

वैसे ये बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर और भी चीज़ें बनती हैं बांस से। उपयोग इसका घरों के मचान, फर्श, नाव, छड़ें और चटाई बनाने में होता है। और इसके रेशों से बेहतरीन गुणवत्ता का कागज़ और कपड़े भी। जी हाँ, बैम्बू फैब्रिक से तो अब कपड़े भी तैयार किए जा रहे हैं।

तो ये थी बांस की कुछ विशेषताएं और गीत भी आप साथ साथ में ही सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत कौन सा है अभी हमें भी नहीं पता, बस ज़रा सा देखते हैं, ढूंढते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। लीजिए सुनिए कि शाम की जो बंसी है वो आखिरकार क्या कह रही है। गीत गाता चल इस फिल्म का गीत है आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में। समझ तो गए होंगे आप कि कौन सा गीत आ रहा है अब रेडियो सेट पर।

तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में बांसुरी के महत्व और उसके सर्वश्रेष्ठ उपयोग का एक आदर्श उदाहरण है ये गीत। फिल्म का नाम गीत गाता चल। जी हाँ, इसी फिल्म का गीत अभी अभी आपने सुना, और इस गीत के बीच में मैंने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन

अब बताती हूँ मैं आपको इस गीत के बारे में। संगीतकार रविंद्र जैन ने इस भजन नुमा गीत को इस तरह से चुना बुना कि बांसुरी सिर्फ एक वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक जीवंत पात्र कैरेक्टर की तरह उभर करके आती है। इस गीत में बांसुरी के महत्व, उपयोग और इसकी विशेषताओं को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। किसी आधुनिक वाद्य या फिर भारी संगीत से इस गीत की शुरुआत नहीं होती। सुना आपने, एक बेहद शांत और रूहानी बांसुरी के सोलो पीस से होती है। लगभग 20-25 सेकंड की ये शुरुआती धुन सुनते ही श्रोता सीधे वृंदावन के माहौल और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाता है, और यही इस गीत की खासियत भी है।

0: तो जैसे ही सुनिए शाम देरी बंसी, जैसे ही ये बोल खत्म होते हैं तुरंत बैकग्राउंड से बांसुरी की तान जवाब देती है। ऐसा लगता है जैसे शब्दों को बांसुरी आगे बढ़ा रही है। पूरे गीत में जहाँ जहाँ गायक सांस लेने या ठहराव के लिए रुकते हैं, वहाँ बांसुरी उस खाली जगह को एक मीठी मीठी धुन से भर देती है। और हमारे फ़ोन पर स्टूडियो में एक फ़ोन कॉल भी आ रहा है या फिर एक मैसेज भी आया है, लीजिए मैसेज पढ़ते हैं। ये मैसेज किसने किया है ये तो हमें नहीं पता है, मैसेज करें तो अपना नाम भी बता दिया करें प्लीज। अच्छा, इंदु जी का मैसेज है, बांस से घास भी मिलती है, उसकी लकड़ी आग में झुलसने के बाद काम आती है। अच्छा, उसकी लकड़ी आग झुलसाने के बड़े काम आती है और सूखा बांस एकदम से आग पकड़ता है। जी हाँ, इसके जो बम्पू होते हैं उनको बॉयल करके खाया जाता है। जी यही तो हम बता रहे थे आपको। अगर रेसिपी आती है इसको बनाने की तो आप ज़रूर कॉल करके हमसे शेयर कर सकते हैं। इंदु जी, मैसेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हम उस गीत के बारे में आपको बता रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कि शब्दों को बांसुरी आगे बढ़ा रही है। अब गीत के बोलों में भी बंसी या फिर राधा नाम का जिक्र आता है। संगीतकार ने ठीक उसी समय बांसुरी की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और उसके सुर को बहुत ही कोमल और स्पष्ट रखा, और ये इस बात का प्रतीक है कि कृष्ण की बांसुरी सचमुच राधा का नाम पुकार रही है। और एक गीत और एक बात खास ये और भी बता दूं कि ये जो गीत है ये राग यमन पर आधारित था, जिसे कि शाम के समय गाया जाता है और ये भक्ति, शांति और समर्पण का एहसास करवाता है। राग यमन के शुद्ध और तीव्र मध्यम सुरों को जब बांसुरी पे बजाया जाता है तो वो सीधे दिल को छूते हैं। और इस गाने में बांसुरी की करुण और प्रेमपूर्ण तान, विरह और मिलन दोनों के भावों को एक साथ दर्शाया गया है। और जब अगली बार आप ये गीत सुनेंगे तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इस गीत में बहुत ज़्यादा ढोलक, तबला या फिर आर्केस्ट्रा का शोर बिल्कुल नहीं रखा गया, केवल हल्का सा रिदम बैकग्राउंड में चलता है, जिससे कि बांसुरी की आवाज़ सबसे ऊपर सुनाई देती है। और यही कारण है कि ये गाना पूरी तरह से बांसुरी प्रधान श्रेणी में शीर्ष पर गिना जाता है, यानी नंबर वन पर। अब मैं अगर बहुत सारा कुछ तो मैं कह चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं संक्षेप में कहूँ, इसका एसेंस निकालूँ, तो इस गीत में बांसुरी केवल गाने को सजाने के लिए नहीं बजाई गई, बल्कि कृष्ण की बांसुरी की महिमा को ही संगीत के रूप में ढाला गया है। और कौन कौन श्रोता इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, बात ज़रूर कीजिएगा। समय बढ़ता चला जा रहा है और हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ उसके बारे में मैं बीच बीच में आपसे बात करूँगी और आप भी हैरान होंगे कि ये जो गीत है क्या इसमें भी बांसुरी का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, गीत आपको बाद में सुनवाते हैं श्रोताओं। एक फ़ोन कॉल आ रहा है, फ़ोन ले लेते हैं हम। हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: हेलो
1: हेलो नमस्कार।
0: हेलो जी।
1: हेलो नमस्कार।
0: हेलो,
1: आप आवाज आ रही है? नहीं,
0: आपकी आवाज।
1: हेलो, आवाज आ रही है?
0: अब आ रही है जी।
1: नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम।
0: नमस्कार, नमस्कार नमस्कार जी, प्रणाम जी, गुड मॉर्निंग जी,
1: सुप्रभात सुप्रभात
0: जी, सुप्रभात
1: जी जी,
0: मेरी आवाज आ रही है आपको?
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपकी तो आज बिल्कुल आ रही है।
0: इको तो नहीं आ रही है?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल सही है
0: जी। बताएं बताएं अनिल जी, वैसे तो आपको खुद ही अपना नाम बताना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा आपसे इसलिए पूछते हैं नाम, बिकॉज रोज ही हमारे से ना नए नए श्रोता जुड़ते हैं, तो कुछ
1: जी, जी, जी, जी।
0: कुछ लोग तो आपको पहचानते हैं, लेकिन सभी नहीं पहचानते हैं ना, तो चलिए।
1: ये आपका, ये आपका बड़प्पन है कि आप सम्मान देते हैं, हम मतलब तुच्छ से प्राणी है, नहीं है, पर चलो जो भी है,
0: ऐसा ना कहें, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं और हमें कॉल करते हैं जी। बताएं
1: तो आपका ये जो एक शब्द हमें पूरा ही बड़े ढंग से सुनना पड़ता है,
0: सुनना पड़ता तो, है जबरदस्ती है क्या कोई?
1: हाँ हाँ, मतलब जहाँ हम खड़े होते ना
0: जी,
1: तो खड़े खड़े रहते, बैठ नहीं सकते, मतलब तुरंत मंत्र मुक्ति होते हैं, बात क्या है ये मुझे समझ नहीं आता है, मुझे कोरो फाट से बात बोल रहा हूँ, ये ऐसे ही बोल रहा हूँ।
0: अनिल जी देखिए, आज तो राधा कृष्ण की बांसुरी की बात हो रही है, बांस दिवस हम मना रहे हैं,
1: जी जी जी,
0: तो हाँ, मैं उसी के बारे में तो बोलूंगा,
1: तो सर्वप्रथम मैं एक बात बोलूंगा कि आज सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि दूंगा जो उरी अटैक में शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देना हमारा पहला ही दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है,
0: तो
1: उनके लिए हमारा शत शत प्रणाम है उनके लिए। अच्छा ये तो हो गया, तो उसके बाद आप अभी एक संगीत सुना रहे थे जो रविंद्र जैन जी का था
0: जी,
1: संगीतकार
0: जी,
1: बांसुरी के बारे में। हाँ। उनके बारे में तो बोला जाए नहीं हमारे लिए इतने,
0: अनिल जी आपकी आवाज गायब हो गई है, हेलो,
1: छोड़ा था रविंद्र जैन जी,
0: दोहराएंगे आप प्लीज, थोड़ा सुनाई नहीं।
1: तो आज एक ये गाना एक उससे यशोदास जी का था,
0: हाँ जी,
1: तो उस गाने में क्या कि आपको ये पता कि वो जो संगीतकार ऐसे संगीतकार है कि वो केरल से बिलोंग करते हैं
0: जी, हाँ,
1: और उनको हिंदी नहीं आती है
0: जी,
1: फिर भी वो हिंदी गाने गाते थे,
0: गाते हैं, हाँ जी।
1: और इतने बढ़िया कि पूरे शास्त्रीय संगीत क्लासिकल सॉन्ग के पूरे ही ज्ञान दाता थे,
0: यही तो हमारे कलाकारों
1: उनकी जितनी तारीफ की जाए कम, मतलब कम नहीं, ज्यादा नहीं
0: जी।
1: तो आप जहां तक संगीत की बात कर रहे थे, तो ऐसा क्या हमारे तो संगीत का इतिहास इतना पुराना है भारतवर्ष का कि मतलब राम के समय से पहले का है, तो इसके लिए मैं एक बात बोलूं कि वैसे तो हमारे वाद्य यंत्रों के बारे में बात हो रही थी, वाद्य यंत्र में बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, तो उनमें एक प्रमुख बांसुरी भी आती है, सितार आती है, ढोलक,
0: हाँ।
1: दफली, तबला, शहनाई, बीना, हारमोनियम, सरोल, जिसका आपने लास्ट में जिक्र किया, सरोल, ये एक्चुअली ये जो

0: जगह भी नहीं, अभी से ढंग से नहीं मिल पाई है
1: जी।
0: सितार की जगह भी नहीं मिल पाई है ढंग से। बाकी उसके बाद बहुत सारे यंत्र हैं।
1: कभी तो आपने कोशिश की कि या बांसुरी सीखी जाए? हमारा तो मन बड़ा करता है, लेकिन वो ना मतलब पता ही नहीं चलता कहाँ पर कौन से क्षेत्र में कौन सी उंगली रखनी है।
0: बाकी इसके बाद एक हमारे समय में माउथ ऑर्गन होता था।
1: क्या होता था?
0: माउथ ऑर्गन।
1: माउथ ऑर्गन, मैं बोलने ही वाली थी आपको। जी
0: जी जी। तो
1: माउथ ऑर्गन बजाया आपने, इस्तेमाल किया?
0: हाँ, हमारे टाइम तो होता था ये।
1: आपने बजाया कभी? कभी जिद करके लिया माता पिता से?
0: काफी कोशिश करी थी
1: जी,
0: तो पूर्ण के बस सीख नहीं पाए इसको।
1: सीख नहीं पाए? अच्छा जी।
0: हाँ,
1: बात नहीं, कोशिश तो की है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। बांस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
0: हाँ
1: जी, बताइए।
0: एक्चुअली बांस की बात करी तो ये हमारे जितने पुराने मकान हुआ करते थे,
1: हाँ,
0: उनमें मैक्सिमम बांस ही यूज होता था। आजकल भी
1: शैडोइंग के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है ना?
0: हाँ हाँ, हाँ। इसका प्रयोग तो हर तरह से पुराने जितने भी कार्य थे, अच्छे बुरे जो भी थे, हमारे जितने भी रिचुअल्स होते थे पुराने, तो उनमें सब में ही यही उपयोग होता था। क्योंकि उन दिनों पढ़ाई बोर्ड नहीं होता था,
1: हाँ जी,
0: तो अधिकतर लोग इन्हीं के बांस से ही हमारा जीवन यापन होता था।
1: अनिल जी, आपको रोक रही हूँ। आपको फेसबुक पेज से लाइव भी लोग सुन रहे हैं, देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं। इस वक्त हम अपने फेसबुक पेज से लाइव भी हैं, और जो भी श्रोता हमें देख रहे हैं, कम से कम लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने विचार यहाँ रख सकते हैं। जी बताएं अनिल जी।
0: तो बांस तो हमारे मतलब शुरू से ही उपयोग होता उतर रहा है, शुरू से ही।
1: एक मिथक है अनिल जी, कहते हैं कि जो बांस होता है ना उसको जलाना नहीं चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है?
0: इसकी सच्चाई ऐसा है कि सच्चाई नहीं है।
1: हाँ।
0: सूखा तो जला सकते हैं, ऐसी दिक्कत कोई नहीं है।
1: हाँ।
0: वो कि एक्चुअली हमारे संस्कारों में रिचुअल्स में है कि
1: हाँ।
0: अगरबत्ती जो है,
1: हाँ,
0: ये बांस से उपयोग होती है,
1: अगरबत्ती। यस।
0: हाँ, तो इसको नहीं जलाना चाहिए
1: कहते हैं।
0: और अक्सर हम पुराने में जो अगरबत्ती हमारे लेटेस्ट में कुछ लोग उपयोग करने लगे, नहीं तो पहले अधिकतर धूप ही यूज होते थे लोग करते घरों में।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: धूप वगैरह या हवन क्रिया करते थे। तो यही हमारे जो पुराने संस्कारों में था, ये अगरबत्ती तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बांस से होती है बुरे कार्य में ही यूज होता है, अच्छे कार्य में, शुभ कार्य में इसका उपयोग नहीं किया जाता।
1: तो अनिल जी, कुछ और रह गया है आपके मन में या अभी और बात रखें? अब हम मतलब आप
0: जी जी
1: मन का कुछ और रह गया है कहने के लिए आपके
0: अब
1: मन में?
0: और कहने को क्या, संगीत के बारे में तो आपको तो संगीत का
1: क्या लग रहे हैं जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आज के कार्यक्रम में?
0: तो मार्वेलस, मैं कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में।
1: जी धन्यवाद। अगला गीत जो कार्यक्रम में आ रहा है अब, वो भी उसमें भी बांसुरी का इस्तेमाल हुआ है, जरा देखिएगा सुनिएगा ध्यान से कहाँ कहाँ बांसुरी इस्तेमाल हुई है।
0: जी, जी,
1: ये गीत ऐसा है कि ये अलग सा ही गीत है, ये पर्यावरण को रिप्रेजेंट करता है।
0: जी जी जी
1: जी, ठीक है, धन्यवाद अनिल जी।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।

ये खूबसूरत गीत साल 1980 की फिल्म एक बार फिर का है। इस गाने का संगीत रघुनाथ सेठ ने दिया था, जो कि खुद भारत के एक बहुत ही बड़े दिग्गज और जाने माने शास्त्रीय बांसुरी

वादक थे। तो इस तरह से बांसुरी का संबंध इस गीत के साथ है, क्योंकि संगीतकार खुद एक बांसुरी वादक थे, तो उन्होंने इस गीत में बांसुरी की रूह फूंक दी है। गाने की धुन बेहद सिंपल रखी है, जिसमें कि भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजों के साथ मुख्य रूप से गिटार, ढोलक और बांसुरी का ही इस्तेमाल हुआ है। गाने के अंतरे के बीच में बजने वाले बांसुरी के टुकड़े प्रकृति की खूबसूरती और वादियों के सुकून को कानों में सजीव कर देते हैं। और दीप्ति नवल तथा सुरेश ओबेरॉय पर फिल्माया गया ये गाना शांत और प्राकृतिक परिवेश के संगीत का एक बेहतरीन उदाहरण है। जी सुनिए ये पूरा गीत, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं आपको, बस 10:30 हमारे स्टूडियो में की घड़ी के मुताबिक होने वाले हैं, घड़ियां मिलाइए।

0: राधा पांडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में युगल स्वरों में आपने सुना एक बार फिल्म एक बार फिर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं, मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो दोस्तों, जब बांस को काटा जाता है ना, उसमें छेद किए जाते हैं, तो वो दर्द से रोता नहीं, बल्कि वो उन सुराखों से बंसी बना करके सुरों की ऐसी गंगा बहाता है कि पूरी दुनिया झूम उठती है। मुसीबतें जब हमें तराशती हैं तो हम भी निखर जाते हैं। चलिए बात करते हैं, एक फ़ोन कॉल और आ गया है हमारे पास। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बात करना चाहेंगे?
1: मैम, इंदु बोल रही हूँ सिद्धवाड़ी से।
0: इंदु जी, सिद्धवाड़ी से आपका स्वागत जी। बताएं
1: मैम,
0: बताएं इंदु जी, आज क्या बात करना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: मैम, आपने रेसिपी के बारे में बोला था तो मैंने सोचा थोड़ी दो रेसिपी शेयर कर सकती हूँ आपसे।
0: अच्छा, कर देती हूँ। एक फोन कॉल, दो दो रेसिपीज, वाह क्या बात है जी, बताएं।
1: एक इंडियन स्टाइल में है ना, और एक तो जैसे वो तिप्पिन बनाते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था कि वो भी बनाते जी, बताएं
1: जी। मैम, एक मेरी आवाज ना वापिस आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है दोस्त से।
0: अब
1: ठीक है? अब मैम
0: अभी ठीक है?
1: मैं आ रही अभी बीच बीच में,
0: तो मैं अपना वाला कम करती हूँ। हाँ जी बताएं अभी।
1: तो मैम, हाँ चेक करके बताती हूँ, ठीक है मैम? अब
0: हाँ जी बताएं।
1: तो मैम, इसमें रेसिपी जो है, जो सबसे पहले हमने बैम्बू लेते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट से
0: नरम नरम जी। तो,
1: हाँ जी, फिर उनको क्या करना, फिर साफ करना उनको अच्छे से, फिर उनको जो है आप ठंडे पानी में पहले ऐसे वॉश कर लो। हाँ। बाद में उनको गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में बॉयल करना उनको। अच्छा। मतलब जिस हिसाब से, अगर वो काफी सख्त है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो वो 2-3 मिनट में हो जाते हैं। उसके बाद उनको ना उसी टाइम, मतलब तुरंत जो उसको ठंडे पानी में डाल दो। और ठंडे पानी में डालने के बाद उनको मैम ऐसे जैसे कपड़े में ऊपर बिछा देना, ताकि उसका जो पानी है ना बिल्कुल सोख हो जाए।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, फिर उसमें हम चिल्ली फ्लेक्स डाल सकते हैं
0: जी,
1: और कुटी हरी मिर्च डाल सकते हैं, नमक डाल दें। फिर गर्म गर्म सरसों का तेल डालना, और थोड़ी सी उसमें ना सोया सॉस जरूर डालनी।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, जैसे नेपाली और तिब्बतन जो होते हैं लोग, ये ज्यादातर ये इसी तरीके से बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अगर हम हमारे इंडियन स्टाइल में बनाना चाहें तो उसमें तो जैसे बेसिक मसाले पड़ते हैं, मेथी दाना हो गया, अजवाइन हो गया, राय के दाने हो गए, मिट्टी सौंफ हो गई, नमक मिर्ची, धनिया सूखा या सूखा जीरा, ये सबको थोड़ा थोड़ा करके नदरा पीस लेना।
0: अच्छा।
1: फिर इसमें क्या करना, नमक गर्म करना हमने ना थोड़ी तेल गर्म करना, और तेल में ना इसमें क्या करना कि थोड़ी वो हमारे गलगल की खटाई होती है ना।
0: हाँ,
1: जो हमारे खट्ट,
0: हाँ,
1: खट्टों की खटाई डालनी थोड़ी सी, जैसे एक कटोरी आधा कटोरी वो होगी। उसमें नमक डालो और थोड़े से ऊपर से चिल्ली फ्लेक्स डालो, और वो खटाई थोड़ी देर उसको एक बॉयल करना, और उसमें वो बैम्बू डाल देना।
0: अच्छा।
1: बहुत सारे, हाँ जी, मसाले भी डाल देना और वो बैम्बू डाल देना। उनको बस 2-3 बार हिलाओ उनको थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा ठंडा होने दो उसको, और ठंडे करके बाद में उसको ना कांच के जार में आप भर दो। फिर आपका अचार भी कभी खराब नहीं होता है।
0: अच्छा, अचार बनाया ना आपने?
1: हाँ जी। हाँ। तो उस तरीके से इसका अचार कभी खराब नहीं होता है, कितने साल रख लो चाहे आप।
0: अच्छा, तो इंदु जी, ये तो मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझे तो नहीं मिलेंगे बैम्बू नरम। मैं सोच रही हूँ कि आप ही को कहूँ, आपको मैं पेमेंट कर दूंगी और आपसे अचार ले लूंगी।
1: कोई नहीं मामा, अगर मैं मुझे मिला या मैं बनाऊंगी तो जरूर मैं आपको आपके लिए स्पेशली रख लूंगी।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
1: जी। और दूसरा, आपने पूछा आज गाने के बारे में, तो आज बंसरी की धुन भला किसी को पसंद नहीं है ना? वो तो हर किसी को पसंद है, तो गाने बहुत अच्छे हैं आपके। और बंसरी के दिन तो ये तो दिन रात भी बंसरी, तो मजा आता है कि सुनने दिन, इससे बोर नहीं होता है ना कोई भी।
0: जी जी,
1: कानों में ये रात दिन भी बंसरी, तो मजा आ जाता है सुनने। और उसमें तो इंसान कोई भी अब होश ही हो जाता है सुनने में। तो आपके गाने बहुत अच्छे हैं आज के।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
1: जी, प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया मैम आपका।
0: धन्यवाद धन्यवाद, आपको पसंद आ रहा है बस
1: जी, बिल्कुल
0: हमें। धन्यवाद।
1: ठीक है मैम, इतना बोलना चाहूँगी
0: उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, अगर आपने वो बात नहीं सुनी होती तो शायद आप ये रेसिपीज हमसे शेयर नहीं कर रही होती।
1: जी मैंने आपकी बात सुनी, जब मैंने अपने कमेंट करा था उसमें मैं बैम्बू के बारे में बताया, शायद थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई होगी,
0: थोड़ा सा पढ़ने
1: में जैसे, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि जो इसकी बैम्बू की घास होती है ना वो भी पशुओं के लिए हेल्दी होती है, जैसे सर्दियों में तो बड़ी फायदेमंद होती है इनके लिए। और ये बताया था कि जिसके बैम्बू जो होते हैं इसको बॉयल करके भी खा सकते हैं हम, बस यही जो, और इसके आग सुलझाने के बारे में वो भी बताया था, बस वो तो सबको पता ही है खैर।
0: हाँ जी हाँ जी जी ठीक है, आपने अपने जो कमेंट किए थे उसका आशय भी समझा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, कार्यक्रम में इतना समय आप लोग देते हैं, और आजकल समय की ही तो बात है सारी, किसी के पास समय ही नहीं होता, हमें सुनते बहुत सारे श्रोता हैं, लेकिन वही है ना कि अपने अपने कामों में।
1: देखो मैम यही है ना, अगर जैसे मुझे कोई सुन रहा है तो कोई किसी ना किसी को वैसे तो चलो सबको पता ही है ये रेसिपी भी, सब किसी और किसी को पता ही है, पर फिर भी मतलब किसी की नॉलेज नहीं हो तो उनको पता चल जाता है, और वैसे अगर कोई और जुड़े तो जिन चीजों को हमें नहीं पता तो हमें भी पता चल जाता है।
0: हाँ जी
1: तो ऐसे यही होते हैं
0: कार्यक्रम का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं हम सभी श्रोताओं को, लीजिए एंजॉय कीजिए, और ये गीत थोड़ा सा डिफरेंट है, कौन जाने रंगानू तेरिया रंगानू।

जी, कौन जाने तेरे रंगानू। और आज कुछ इसी तरह की बातें हमारे इस कार्यक्रम में भी हो रही हैं। अभी भी हमारे पास समय है श्रोताओं, बस आप यूं ही बने हुए हैं हमारे साथ। इस बात की हमें खुशी है। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बात कर रहे हैं और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, यानी सुप्रभात धर्मशाला। और अब बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस की, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि काम बराबर तो दाम भी बराबर, चाहे पुरुष हो या महिला। योग्यता और मेहनत का सम्मान दोनों के लिए एक समान ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको बांस के साथ जोड़ दूं, तो बांस जैसा धैर्य, पानी जैसी अनमोल समझदारी और अपनों के लिए बराबरी का सम्मान हमारे आज के इस कार्यक्रम का मेन मुख्य उद्देश्य था, थीम था। पानी पर हम अभी आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में इस दिवस की घोषणा की थी और पहली बार ये दिन 18 सितंबर 2020 को मनाया गया था, समान वेतन का दिवस। वैश्विक स्तर पर महिला पुरुष की तुलना में औसत 20% कम वेतन वाले जो हैं वो युवा हैं, लेकिन ये तब पहले किया जाता था और अब समानता की बात वही हो रही है और हर जगह होती ही है। भारतीय संविधान के सिद्धांत 39D के अंतर्गत समान समय के लिए समान वेतन का सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशित में शामिल है और इसके अलावा देश में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भी लागू है, जो कि लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

जी हाँ, जो मेहनत कश इंसान होते हैं वो अपने हक का पैसा कहीं भी जाने नहीं देते हैं और लोगों को उनका हक का जो पैसा है वो दे भी देना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कार्यक्रम में कि आज विश्व जल निगरानी दिवस भी है और वर्तमान दुनिया में लगभग 2 अरब लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। साबुन पानी के कारण हैजा, टाइफाइड, बुखार और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं।

और जब हम बांस की बात कर रहे थे या कोई भी पौधा हो उसके लिए पानी ज़रूरी होता है और हम भी तो पानी के बिना नहीं रह पाते हैं। आप एक दिन पानी ना पीजिए, दो दिन ना पीजिए, आखिरकार आप खाना नहीं खाएंगे लेकिन पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा। और अगर वो भी साफ ना हो तो आपको पता ही है कि क्या क्या हो सकता है आपकी सेहत के साथ। तो जैसे बांस को बढ़ने के लिए पानी चाहिए, वैसी ही हमारी जिंदगी की गाड़ी भी पानी के बिना नहीं चल सकती है। और विश्व जल निगरानी दिवस का मतलब ही यही है कि किस तरह का जल जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर हमारी जो निगरानी है वो पूरी तरह से होनी चाहिए। अब चाहे वो कुछ संस्थाएं हैं जो इसी चीज़ के लिए कार्य करती हैं, वो भी अपना ईमानदारी से कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा। आपने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे वो देखा होगा मिट्टू तबाही को, है ना। और कुछ लोग, फिर कुछ संस्थाएं आ गईं, वो ये कहने लगीं कि भाई इसने अकेले ये काम नहीं किया है, इस नदी को जो अजनार नदी है वो ब्यावरा की, वो उसने अकेले साफ नहीं की है, हम लोग भी थे, हमने इनिशिएटिव लिया था। परंतु इनिशिएटिव लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इनिशिएटिव तो कोई भी ले सकता है, आज मैं भी कह सकती हूँ कि मैं अपनी आँखें दान करूँगी, लेकिन इम्प्लीमेंट कब होगा मेरे जाने के बाद? क्या मेरे परिवार वाले मेरी वो इस इच्छा को रखेंगे? तो मेन बात होती है कि क्या आपने वो काम करके दिखाया। तो उस लड़के ने कंटिन्यूस निरंतर बना रहा, वो ये नहीं सोचा उसने कि बाकी लोग जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था वो साथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसने अपना एक ध्येय रखा कि मैं रोज़ के इतने घंटे काम करूँगा, और धीरे धीरे धीरे धीरे, वो कछुआ वाली कहानी सुनी है ना आपने, खरगोश को लगा था कि ये तो धीरे धीरे चलता है भाई, और मैं फटाफट से तेज़ी से भाग जाऊँगा और मैं फर्स्ट आ जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में नींद लगी, सो गया कहीं, और कछुआ धीरे धीरे धीरे धीरे अपने रास्ते पे बढ़ता चला गया और मंजिल पर पहुँच गया। तो हम ज़्यादा बड़ा कुछ कर पाएँ न कर पाएँ, लेकिन धीरे धीरे भी अपने काम में हम धीरे आगे बढ़ते चले जाएँ ना, तो हम अपनी मंजिल को पा ही सकते हैं। और वैसे भी मंजिल मंजिल कुछ नहीं होता, हमें निरंतर चलना होता ही है ज़िंदगी में। आज एक मंजिल पा ली है, कल फिर दूसरी मंजिल तैयार हो जाएगी, है ना, ज़िंदगी इसी का नाम है। चलिए, हम पानी की बात कर रहे थे तो आज के दिन खुद से एक छोटा सा वादा करिए कि पानी की एक बूंद की भी हम निगरानी करेंगे और इसे बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि पानी बचेगा तभी तो कल हमारा सजेगा।

और श्रोताओं इस गीत के साथ अब ज्योति को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति भी दे दीजिए। हम उरी हमले में शहीद होने वाले सैनिकों को शत शत नमन करते हैं। आज ही की वो तारीख है जब ये हुआ था और उन हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक हो, ख़ास मुबारक जिन जो कि आज के दिन अपना कोई ख़ास दिवस मना रहे हैं। पिछले कल हमने सैर का त्यौहार मनाया है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और अगले कल राधा अष्टमी आने वाली है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो फेसबुक पेज लाइव होता है उसमें कुछ श्रोता हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि वो लाइव ख़त्म हो जाता है और वो कमेंट हमें उसके बाद दिखाई देता है। उनमें से कुछ श्रोताओं के नाम हैं, आर के गुप्ता गुड मॉर्निंग कहा है उन्होंने, और नाना लाम से मध्य प्रदेश से हैं, छिंदवाड़ा से, वो भी हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। जी धन्यवाद।

दोस्तों, इसी के साथ ज्योति पठानिया को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। कार्यक्रम में मुझे टेक्निकल सहयोग मिला शशि से और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे संदीप परमार। और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: नमस्कार
1: वत्सल साहब आइए आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया हमारा डोनेशन
0: ये छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या है? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फते आप पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो,

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: आप इनके पिताजी?
2: हाँ।
1: थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: Yeah, sure.
1: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर इमु बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
10: ये क्या कर रही है?
11: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
10: ये केले के छिलके की?
12: Oh, no.
11: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
10: पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
11: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

अब तो मेगाहर्ट्स पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: नमस्कार
1: वत्सन साहब आइए आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया मैं डोनेशन ये
0: छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो

0: हेलो पुलिस पुलिस,
1: कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस।
0: किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी?
1: बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी?
0: फंस गए ना इस झंझट में।
2: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
3: Yeah, sure.
2: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
4: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
5: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
6: कब देवी?
5: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
6: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
5: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
6: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
5: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
6: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
5: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
6: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
7: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
8: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
9: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
10: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
8: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर मुंह बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
9: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
11: ये क्या कर रही है?
12: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
11: ये केले के छिलके की।
13: Oh, no.
12: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
11: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
12: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: अरे पता नहीं स्वच्छिका कहाँ रह गई। इतना लेट तो वह कभी नहीं होती थी। लगता है आज मुझे अकेले ही कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा।
1: अरे रुको रुको सुजल, आ गई मैं।
0: अरे आ गई तुम, मुझे लगा कहीं पानी भरने तो नहीं चली गई।
1: पानी भरने? नहीं नहीं सुजल, कुएं हैंडपंप पर जाना हुआ बीता हुआ कल, अब तो है हमारे घरों में नल से जल।
0: हाँ सही कह रही हो तुम, पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है।
1: मुझे आज भी याद है सुजल कि कैसे मेरे गांव में महिलाएं, बच्चियां और लोग सुबह से पानी के इंतजाम में लगे रहते थे ताकि बाकी काम समय पर पूरे हो सके।
0: सही कह रही हो तुम, कितनी बार तो उन्हें दिन में दो दो चक्कर लगाने पड़ते थे ताकि पानी कम ना पड़ जाए।
1: और बच्चियों की पढ़ाई भी छूट जाती थी। यही नहीं, गंदे पानी के सेवन से बीमार होना तो आम बात हो गई थी।
0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
1: सोचूं मैं सोचूं तेरा ढंग कैसा।
0: वाह सुचिका, ये तो नया गाना बन गया।
1: सुजल महाशय, गाने का समय खत्म, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए।
0: ओ हाँ, आप सभी को सुजल का
1: और स्वच्छिका का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम प्रस्तुत है।
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी। सुजल जल जीवन मिशन ने समय बदल दिया है। जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसके तहत हर घर जल कार्यक्रम ने देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाना शुरू कर दिया है।
0: हाँ अब महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चियों को पानी ढोने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता।
1: लेकिन ये सब आसान नहीं था। कई लोग सोचते हैं कि जल जीवन मिशन बस पाइप बिछाने का काम है, जबकि सच्चाई ये है कि ये हर परिवार के लिए रोज साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाने का संकल्प है।
0: जो पानी आज नल में दिख रहा है वह अपने आप नहीं आया, इसके पीछे पूरे देश की मेहनत और लोगों की भागीदारी है। अब जल जीवन मिशन 2.0 के तहत इसे 2028 तक बढ़ाया गया है ताकि हर घर तक पानी पहुंचे और हर गांव में जल योजनाओं का बेहतर संचालन, रख रखाव और सतत सेवा सुनिश्चित की जा सके। राहें खुद ब खुद बनेंगी, तुम बस कदम बढ़ाते चलो। होगा हर काम आसान, होगा हर काम आसान, तुम मन में अलख जगाते चलो।
1: सही कहा, होगा आसान हर वो काम जो अब तक तुमको भारी था। जीत उसी की होती है जिसकी पूरी तैयारी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश ने हर मुश्किल में काम किया, कहीं रेगिस्तान की गर्मी में, कहीं पहाड़ों में। आज हर घर और हर बस्ती तक नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है।
0: अरे क्या हुआ?
1: ये सब सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, देश के लाखों महिलाओं और बच्चियों के सिर से आज पानी ढोने का बोझ उतर गया है। अच्छा, नल से जल मिलने के बाद हमारे गांव में और क्या बदलाव आया?
0: पहले पानी पी लो फिर बताता हूँ। देखो स्वच्छता, सिर्फ पानी ही नहीं आया, गांव के लोग भी इस योजना से जुड़े हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से लोग मिलकर इसे संभाल रहे हैं और हमारी माताएं बहनें इसमें आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभा रही हैं।
1: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ये क्या होता है, जरा अच्छे से समझाओ ना।
0: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति के लोग, जिनका गठन हर गाँव में होता है और इस समिति में आधी महिलाओं का होना जरूरी होता है।
1: पर इनका कार्य क्या होता है?
0: चलो ये भी बता देता हूँ। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति का काम है ये सुनिश्चित करना है कि गांव में पानी की सप्लाई ठीक से चलती रहे। नल जल मित्र ऑपरेटर की मदद से मोटर, पाइपलाइन और टंकी का रख रखाव कराया जाए, लीकेज ठीक किए जाए, पानी की गुणवत्ता की नियमित जाँच हो और हाँ, पानी के इस्तेमाल के लिए जो शुल्क है उसके लिए लोगों को जागरूक करना।
1: बाप रे, ये सब वो गांव वाले खुद करेंगे?
0: अरे नहीं, ये सब करने के लिए पंचायत उनकी मदद करती है, साथ में वह कुछ कार्य को करने के लिए स्व सहायता समूह की दीदी की भी मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा, और पंचायत स्तर पर सरपंच या प्रधान या मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि के क्या काम होते हैं?
0: पंचायत स्तर पर सरपंच, प्रधान, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि पानी समिति के साथ मिलकर योजना का रखरखाव करते हैं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
1: अरे वाह, अब समुदाय की भूमिका भी बता दो सुजन कुमार।
0: स्वच्छता समुदाय सबसे अहम कड़ी है। उनके साथ के बिना किसी भी योजना का रखरखाव और उसकी सततता कायम रखना बहुत मुश्किल है। इस योजना के लिए समुदाय और हर व्यक्ति का कर्तव्य है। पानी समिति एवं पंचायत के साथ मिलकर कार्य करना, समय पर जल सेवा शुल्क देना, पानी बर्बाद न करना, पानी के स्रोत की रक्षा करना एवं इसे बनाए रखने के लिए जल के पुनः भरण यानी रिचार्ज पर कार्य करना, शिकायत छिपाना नहीं तुरंत बताना और सरकार के साथ मिलकर समाधान भी ढूंढना।
1: जब हर व्यक्ति कहे ये योजना मेरी है तभी योजना टिकाऊ होती है।
0: और इसीलिए अब योजना की जानकारी जैसे पानी की आपूर्ति, गुणवत्ता और रखरखाव को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति जानकारी के आधार पर अपनी भूमिका निभा सके।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, पर योजना में कुछ खराबी भी तो आती होगी, उसे कैसे ठीक करते हैं?
0: ऐसी स्थिति में ग्रामीण अपने गांव के सरपंच या पानी समिति के सदस्य को बता सकते हैं। इसे चलाने के लिए एक ऑपरेटर भी होता है स्वच्छिका, जिसे हम नल जल मित्र कहते हैं। वह भी छोटी मोटी समस्या का समाधान कर देता है। बड़ी समस्या के लिए जिला स्तर पर स्थित

0: DTU से संपर्क कर उनसे मदद ली जा सकती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: इस मिशन ने अब तक क्या क्या प्रगति की है और JJM 2.0 में क्या खास है, हमें बताएंगे श्री कमल किशोर सोन, जो जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक हैं। चलिए उनको सुनते हैं।
2: नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के माध्यम से आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि आज का यह एपिसोड जल जीवन मिशन पर केंद्रित है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। साथियों, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक और गांव के आंगनवाड़ी व स्कूल जैसे संस्थानों तक पाइपलाइन के माध्यम से नल से साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। आज मिशन उस चरण में पहुंच चुका है जहां कई गांवों और पंचायतों में योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब उनका संचालन और रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसी क्रम में मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन का दूसरा चरण लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इस नए चरण में जल जीवन मिशन अब नए सुधारों के साथ संचालित हो रहा है। अब हमारा ध्यान सिर्फ हर घर तक नल से जल पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह सेवा नियमित, सुरक्षित और लंबे समय तक सतत रूप से बनी रहे। इसके लिए गांव के लोगों की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है। जल सेवा आकलन के माध्यम से गांव के लोग खुद अपनी योजना की समीक्षा करते हैं एवं पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और सेवा की स्थिति को समझते हैं। इसके बाद जिला स्तर की तकनीकी टीम यानी DTU डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल यूनिट की मदद से सेवा में सुधार की योजना तैयार करती है। DTU पंचायतों को रखरखाव एवं मरम्मत के कार्यों में भी मदद करता है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत जन भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दो स्तरों पर सीख और अनुभव साझा किए जा रहे हैं। सुजल ग्राम पेयजल संवाद में ग्राम और ग्राम पंचायत अपनी अच्छी पहल और उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर तक साझा करते हैं, जिससे उन्हें पहचान मिलती है, उनके कार्यों को सराहा जाता है और देश के दूसरे गांव भी उनसे सीखते हैं। वहीं DC और DM पेयजल संवाद एक ऐसा मंच है जहां जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करता है, जिससे पेयजल से जुड़े प्रभावी समाधान और श्रेष्ठ कार्य पूरे जिले के साथ साथ अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। वहीं DC DM पेयजल संवाद में जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करते हैं, जिससे पेयजल संबंधित जरूरी समाधान और बेहतर कार्यों को पूरे जिले और अन्य स्थानों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन केवल पाइप और टंकी लगाने की योजना नहीं है, बल्कि यह जन भागीदारी पर आधारित एक जन आंदोलन है। जब गांव खुद अपनी जल व्यवस्था को समझकर संभालता है, तभी यह लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। इसलिए जल स्रोतों की सुरक्षा, गुणवत्ता बनाए रखना और समुदाय की भागीदारी इस मिशन के प्रमुख आधार हैं, ताकि पानी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित बना रहे।

0: स्वच्छता जैसे मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने बताया, जल जीवन मिशन 2.0 में कई सुधार लाए गए हैं, जिनसे पानी की सेवा को नियमित, टिकाऊ और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सोचो, अभी तो देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल आ रहा है, जब देश के सारे घरों में नल से जल आने लगेगा, वो भी नियमित सतत, तो लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना।
1: हाँ, लेकिन जो जल नल से आएगा उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब गांव वालों को ही तो निभानी होगी, ताकि कोई बीमार ना पड़े। कौन हंसा? सुजल, तुमने सुना?
0: ये वही है दुशिका, तुम्हारी बातें सुनकर हंस रही है।
1: मैंने कोई मजाक की बात कही है क्या?
0: अभी अभी तुमने क्या कहा?
1: क्या कहा?
0: यही कि जल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लोगों की भी होगी।
1: तुम बार बार हंस क्यों रही हो?
2: तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही हूँ। अगर तुम लोगों को साफ पानी की परख होती, उसका महत्व पता होता, तो मैं कब की यहाँ से दूर जा चुकी होती। तुम लोग सोचते हो कि बस पानी आएगा तो सब ठीक, अगर पानी गंदा हो जाए तो बीमारी, अस्पताल, सब मेरी वजह से होगा। मैं दूषिका, पानी प्रदूषण की रानी।
0: ओ पानी प्रदूषण की रानी, अब तुम्हारा दौर खत्म।
1: इस बार हम तेरी एक नहीं चलने देंगे।
0: हमने ठान लिया है लोगों को साफ पानी का महत्व भी बताएंगे।
2: तो क्या अब तक लोगों के घर पानी नहीं आता था? ऐसा क्या बदलाव आ गया है?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल आता था, लेकिन जल जीवन मिशन में ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर पेयजल स्कीम में स्रोत से आने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए डिसइंफेक्शन यूनिट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हो। क्लोरिनेशन, फिल्टरिंग और अन्य ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के माध्यम से साफ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति हो सके।
2: पर पानी तो बाद में भी गंदा हो सकता है, लोगों को कैसे पता चलेगा इसका?
0: तुम्हें पता नहीं है, जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता की जांच बहुत जरूरी हिस्सा है। तुम्हें पता है इसके लिए हर गांव में 5 महिलाओं एवं दीदियों को फील्ड टेस्टिंग किट से पानी की गुणवत्ता की जांच करना सिखाया जाता है। जरूरत पड़ने पर सैंपल या नमूने को लैब में भेजकर सत्यापित किया जाता है। JJM के नए चरण में ऐसे महिलाएं दीदी समूह को अब सुजलाम शक्ति का नाम दिया गया है।
2: स्वच्छिका मैडम और सुजल भाई साहब, लोग तुमसे ज्यादा मेरी बातें मानते हैं। तुम लोग तो उन्हें कठिन कठिन टास्क देते हो, ये धो वो साफ करो, ऐसा रखो वैसा रखो। मैं उन्हें कहती हूँ, छोड़ो, हटाओ, फेंको, रहने दो, कोई चिंता मत करो।
1: लेकिन अब सब हमारी बात सुनेंगे। हम लोगों को बता रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी आदतों से हम पानी के स्रोत को साफ रख सकते हैं,
0: क्योंकि शुद्ध पेयजल हमें बीमारियों से बचाता है, बच्चों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है और घर का खर्च भी कम कराता है। जब परिवार स्वस्थ रहता है तो दवा और इलाज पर होने वाले खर्च बचता है, जिससे पैसे बच्चों की पढ़ाई, पोषण और घर की जरूरत पर खर्च किए जा सकते हैं। इसलिए दूषिका महोदय, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो।
2: ओह, ये जल जीवन मिशन तो सबको जागरूक बना रहा है। कोई बात नहीं, अभी जा रही हूँ, लेकिन फिर आऊंगी। जिस गांव के लोग कमजोर पड़ेंगे वहाँ फिर पहुँच जाऊंगी मैं, देखना वो मुझे जरूर मौका देंगे।
0: जाओ जाओ, तुम्हारी अब कोई जगह नहीं।

0: समुदाय के साथ मिलकर, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद ये योजना चलाने की जिम्मेदारी गांव के लोग कैसे संभालेंगे? योजना समुदाय व पंचायत को कैसे और कब दी जाएगी?
1: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निर्माण को पूरा होने के बाद कुछ दिन स्कीम को जांचने के लिए ट्रायल रन किया जाता है ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए। इसे कमीशनिंग कहते हैं। सब कुछ सही पाने के बाद गांव स्तर की योजना को पंचायत व समुदाय को सौंप दी जाती है और यह करने के लिए सरकार समुदाय के साथ मिलकर इस अवसर को अर्पण जल दिवस के रूप में मनाती है। यह ट्रायल रन कम से कम 15 दिन का होना जरूरी है।
0: जल अर्पण दिवस बड़ा प्यारा नाम है, इसका मतलब क्या है?
1: ये जानकारी हमें जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन दे रहे हैं।
2: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। चलिए आज के इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जल अर्पण दिवस क्या है। 73वें संविधान संशोधन और जन भागीदारी की भावना के अनुरूप जल जीवन मिशन में जब कोई जल आपूर्ति योजना पूरी होती है तो उसे संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत और समुदाय को सौंपा जाता है। इसी जिम्मेदारी को उत्सव के रूप में स्वीकार करने के लिए जल अर्पण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जल अर्पण दिवस उस गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है जब सरकार और विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजनाओं को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय को सौंपते हैं। इस दिन गांव का समुदाय अपनी जल व्यवस्था को गर्व, जिम्मेदारी और अपनापन के साथ स्वीकार करता है और उसे संभालने व सुरक्षित रखने का सामूहिक संकल्प लेता है।
1: जल अर्पण दिवस क्या, अब समझ में आ गया? ये जानकारी जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने दी थी।
0: हाँ बिल्कुल, इस दिन का संदेश ये है, अब पानी सिर्फ सरकार की योजना नहीं, जिम्मेदारी है पूरे गांव की। ये सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे आज, कल और आने वाले वर्षों तक। लेकिन ये बताओ कि ये कैसे जांचेंगे कि योजना अब हैंडओवर के लिए तैयार है? क्या क्या करना होगा?
1: योजना को गांव में सौंपने से पहले ये देखा जाता है कि पानी समिति बनी है या नहीं। क्या योजना को कुछ दिन चलाकर जांचा गया है पानी सही है या नहीं? इसकी जांच हो चुकी है। नल जल मित्र और समिति को काम की जानकारी दी गई है। पूरे सिस्टम की जमीनी जांच हो गई है और सब जानकारी गांव में खुले में लगाई गई है। जल चौपाल करके गांव वालों को जोड़ा गया है और जल स्रोत की सफाई भी हो चुकी है। जब ये सब पूरा होता है तभी योजना गांव को सौंपी जाती है।
0: अरे वाह, मनाएंगे कैसे इसे, बताओ तो। ये
1: इसे एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसे हम अपनी स्थानीय लोक परंपरा के हिसाब से मना सकते हैं। सोर्स टू टैप मिलकर साथ के समुदाय ट्रांसिट बाक यानी जल परिक्रमा की जाए। गांव के स्कीम का नक्शा और जल गुणवत्ता रिपोर्ट सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जाए। जल योजना संरचनाओं पर हम पवित्र धागा बांधकर जल बंधन धागा बांध सुरक्षा का संकल्प ले रहे हैं और स्रोतों की रक्षा कर रहे हैं। साथ में जल संरक्षण की आदतों को अपनाएंगे एवं उपाय भी करेंगे। इसी दिन योजना से जुड़े सारे दस्तावेज पंचायत के हैंडओवर किए जाएंगे। ये ध्यान रहे, इसे अपनी स्थानीय संस्कृति के अनुसार मनाया जाए। इस दिन हर गांव को अपने माननीय सांसद एवं स्थानीय मंत्री एवं अन्य प्रतिनिधियों एवं प्रवासी ग्रामीणों को जरूर बुलाना चाहिए। इसके अलावा अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जल उत्सव भी मना रहे हैं।
0: जल उत्सव? ये जल उत्सव आखिर है क्या?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल उत्सव को 3 स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है ताकि हर व्यक्ति इससे जुड़ सके।
0: 3 स्तर? जरा आसान भाषा में समझाओ ना।
1: हाँ बिल्कुल। सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर का जल महोत्सव। ये हर साल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से

0: 21 मार्च विश्व जल दिवस तक मनाया जाता है।
1: अच्छा, यानी पूरे देश में एक साथ पानी को लेकर जागरूकता और भागीदारी का माहौल बने।
0: बिल्कुल सही, इसमें देश भर में कार्यक्रम, संवाद, सम्मान समारोह और जन भागीदारी के आयोजन होते हैं ताकि पानी को लेकर सामूहिक जन जागरूकता का माहौल बने।
1: और दूसरा स्तर कौन सा है?
0: दूसरा है राज्य स्तर का राज्य जल उत्सव या नदी उत्सव। इसमें हर राज्य अपनी नदियों, जल परंपराओं और स्थानीय संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करता है।
1: मतलब हर राज्य अपने हिसाब से अपनी पहचान के साथ जल उत्सव मनाता है।
0: हाँ, जैसे कहीं नदी के किनारे कार्यक्रम, कहीं जल संरक्षण अभियान, तो कहीं स्थानीय त्योहारों के साथ इसे जोड़ा जाता है।
1: और तीसरा स्तर?
0: तीसरा और सबसे अहम है गांव एवं पंचायत स्तर का लोक जल उत्सव।
1: ये तो सबसे जरूरी है क्योंकि असली काम तो गांव में ही होता है।
0: सही कहा, ऐसे जल उत्सव में जल चौपाल भी होती है। गांव के लोग मिलकर अपनी जल योजना की समीक्षा करते हैं और यदि कोई कमी हो तो उसे ठीक कर अपनी सेवा को और बेहतर बनाते हैं। पानी के स्रोतों की सफाई की जाती है और सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि योजना को टिकाऊ बनाएंगे।
1: मतलब देश से लेकर गांव तक हर स्तर पर पानी को एक उत्सव, एक जिम्मेदारी और एक जन भागीदारी के रूप में जोड़ा गया है।
0: बिल्कुल, जल उत्सव का मतलब सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि यहाँ के जन भागीदारी से जल की जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल, और हमने इसके लिए जल अर्पण दिवस के दौरान सम्मिलित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ के सांसद श्री रोडमल नगर जी से बात की। आइए जाने क्या कहते हैं वे इनके बारे में।

0: धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी, धन्यवाद जल शक्ति मंत्रालय सी आर पाटिल साहब, धन्यवाद पूज्य योगी महाराज। एक ऐसी सोच जो मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ बिकॉज मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, पानी जो आने वाले समय पे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा धरती पर, अब उसको बचाना, उसको संजो करके रखना और वहां पर पानी की व्यवस्था, हर घर में नल से जल देने की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी सोच थी, ये इम्पॉसिबल जैसा था, इम्पॉसिबल जैसा। लेकिन मैंने इसको पॉसिबल होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में देखा, 2,00,000 लीटर की टंकी लगी, ऑटो मशीन पर पानी हर घर में आ रहा है, कितनी खुशी थी, ये खुशी का कोई मापदंड नहीं।
1: जल जीवन मिशन का जो काम है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, हर घर नल से जल, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और राजगढ़ जिले में भी 1331 के लगभग गांव ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने लिए हैं। ये ठीक है कुछ व्यवधान रहे, उसकी वजह से कुछ लेट लतीफ हुई है, लेकिन बहुत ही प्रशंसनीय है। कुंडीबे गाँव में तो 24x7 24 घंटे नल से जल प्रदाय हो रहा है, और वहाँ की जो पद्धति को हमने देखा और वहाँ से जो हमने सीख ली वो भी बड़ी अनुकरणीय है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि नल की टोटी निकाल देते हैं तो पानी व्यर्थ में बहता रहता है, लेकिन कुंडीबे ग्राम पंचायत के लोगों की मैं सराहना करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, हर नल में उन्होंने टोटी लगा रखी है। और मैं एक दिन गाँव में गया, मैंने टोटी चालू कर दी और लोगों की तरफ देखा तो लोग हंसने लगे। मैंने कहा बस मैं यही चाहता था कि टोटी बंद रहनी चाहिए और ये आप अपनी तरफ से हमारे साथ में खड़े हैं, ये बड़ा ही अच्छा एक वातावरण था, बड़ा अच्छा क्षण था। और अच्छा है जल जीवन मिशन के माध्यम से जैसा कुंडीबे हुआ है वैसे अन्य गाँव भी हो, और जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर घर नल से जल, इसको देने में हम सफल होंगे। जल जीवन मिशन का काम है गांव तक पानी पहुंचाना, लेकिन गांव का वितरण करना है तो ग्राम पंचायत का ही काम है, इसके लिए जन संगठनों को आगे आना पड़ेगा। देखिए जो काम करता है वहां गलतियां होती है, चूक भी होती है, कमियां भी रहती है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हम सब आपके साथ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गोरखपुर के माननीय सांसद और राजगढ़ के सांसद से बात अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई सुजन। ऐसा लगता है कि जल अर्पण दिवस एवं जल उत्सव संस्कृति और जिम्मेदारी का संगम है। इसके अलावा आओ अब ये जानते हैं कि जल जीवन मिशन में कौन कौन सी डिजिटल प्रणालियां विकसित की है।
3: पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय अपनी पेयजल व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सके एवं चला सके, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत डैशबोर्ड। पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से सरपंच और मुखिया जी योजनाओं की प्रगति, बनी हुई जल संरचनाएं, पानी की गुणवत्ता और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी राय व सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है सुजलाम डाटाबेस। इसके माध्यम से हर पाइप पेयजल योजना की जानकारी स्रोत से लेकर नल तक एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जल आपूर्ति योजना और प्रत्येक गाँव को एक विशिष्ट पहचान यानी सुजल गांव आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे योजना की निगरानी, प्रबंधन और सेवा वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके माध्यम से आप अपने गांव की पेयजल योजना की जानकारी जल स्रोत से लेकर नल तक योजना के सभी घटकों को देख पाएंगे। योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी इसमें उपलब्ध होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम निर्णय सहयोग प्रणाली कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पानी रहेगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर योजना का भविष्य उसके जल स्रोत की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह प्रणाली हमारे परंपरागत स्थानीय ज्ञान जो सदियों से जल के साथ हमारे अनुभव से विकसित हुआ है को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। इस समन्वय से हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है जिससे हम अपने जल स्रोतों को रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रह सकते हैं ताकि आज नल तक पहुंचने वाला पानी कल और आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे।
4: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी।
5: हम पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
6: मैं आज समझ गई हूँ, सबसे ताकतवर गांव वो है जो पानी की रक्षा करता है। अब मेरा क्या होगा?
7: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी।
5: हम पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
8: मैं आज समझ गई,

0: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। साथियों, ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले टाइड ग्रांट जल एवं स्वच्छता के कार्यों के लिए निर्धारित है। इस राशि का उपयोग गांव की पेयजल योजनाओं की देखभाल, मरम्मति, जल गुणवत्ता जांच, जल संरक्षण और लोक जल उत्सव, जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे गतिविधियों में किया जा सकता है। इससे पेयजल योजनाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से चलती रहेंगी और ग्राम पंचायत के सहयोग से लोगों को बेहतर पेयजल सेवा मिलती रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइप जल आपूर्ति योजना से मिलने वाला साफ और सुरक्षित पीने का पानी केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद है। इससे डायरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों में कमी आती है, बच्चों और गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य सुधरता है और परिवारों का इलाज पर होने वाला खर्च भी घटता है। स्वस्थ परिवार मतलब कामकाज में कमी नहीं, आमदनी में नुकसान नहीं। इसलिए पाइप नल योजना के माध्यम से मिलने वाला साफ पानी गांव की तरक्की की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, चूंकि मानसून अपने चरम पर है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वर्षा जल का एक एक बूंद हमें बचाना चाहिए, मेरा सबसे आग्रह है कि पानी का समझदारी से उपयोग करें और बर्बादी से बचें। साथ ही जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के रिचार्ज की तैयारी करें ताकि हमारे पेयजल स्रोत साल भर टिकाऊ बने रहें। आइए हम सब मिलकर सरकार और समुदाय की साझा जिम्मेदारी निभाएं, अपनी पाइप पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखें, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक सुरक्षित और नियमित पानी पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: अरे सुजन, अगले अंक के बारे में भी तो कुछ बताओ।
2: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन देश के हर गांव को स्वच्छ और एक गांव को ODF प्लस ग्राम बनाने हेतु क्या प्रयास कर रहा है और क्या रहेगी इसकी रणनीति। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सुनिए स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: अगले अंक तक अब सभी को हमारा नमस्कार।

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: नमस्कार
1: बच्चन साहब आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया हमारा डोनेशन ये
0: ये छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए नहीं झंझट में?
1: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: Yeah, sure.
1: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर इमु बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
10: ये क्या कर रही है?
11: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
10: ये केले के छिलके की?
12: Oh, no.
11: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
10: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
11: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एचटीटी 40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। एचटीटी 40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों को सीमित कर दिया गया है। बाजारों और शॉपिंग केंद्रों को रात 9 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इसके संभावित असर को देखते हुए वे इन कथित वित्तीय माध्यमों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी, समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 74,547 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23,336 पर था। 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ कल से जापान के आइचे नागोया में हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार
1: वत्सन साहब आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया मैं डोनेशन
0: ये छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: या श्योर।
1: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
10: ये क्या कर रही है?
11: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
10: ये केले के छिलके की।
12: Oh, no.
11: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
10: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
11: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज

0: नमस्कार
1: वत्सल साहब आइए आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया हमें डोनेशन
0: ये छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: Yeah,
1: sure. आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर मुंह बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
10: ये क्या कर रही है?
11: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
10: ये केले के छिलके की?
12: Oh, no.
11: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
10: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
11: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

नमस्ते नमस्कार। कानवी दशमलव 2 MHz पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक। तो श्रोताओ माटी दी महक कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुह तक लेकरी मैं बिल्कुल हाजिर हुई हो कने तो हाँ सारे भी इंतजार जेड़े से जरूर करा दे उन्हें न कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दिया तो हाँ सारे इस कार्यक्रम कने जुड़ते न। तो श्रोताओ इंतजार दी जेड़ा घड़ी है से तो हाँ वास्ते बिल्कुल खत्म है। जेड़ा घड़ी दी सुई है ना से बिल्कुल टिक टिक टिक करती रहती है कने हाँ जो उस समय पर पहुँचाइंदी है कने समय के अनुसार हाँ जेड़ा जेड़ा काम सोचे होंगे उस तरीके ने हाँ अपने जेड़ा काम मन से कर देना। पर एक गल हमेशा तो हाँ सोचते होने कि समय जेड़ा है से कुसी वास्ते नहीं रुकता क्योंकि समय जेड़ा है से हाँ जो आजकना जेड़ा दिन है से हाँ किस तरीके ने इंजॉय करा दे या किस तरीके ने हाँ अपने जेड़ा काम मन तिना जो चुन देन या अपने काम जो किस तरीके ने कर देन। इसी कने तो हाँ जेड़ा पिछले दिनें दी गल करिए तो हाँ बड़े ही धूमधाम ने जेड़ा सैर पर्व है से इंजॉय किया होना है कने खूब सारी जेड़ा रोटियां न बबरू हैं जेड़ा चने दी दाली दे पतरोड़ू हैं पकौड़ू हैं से सारे तो हाँ भरी भरी करी जेड़ा से खादे भी होनी ने कने बंडे भी होनी ने क्योंकि इस त्योहारे दी जेड़ा खासियत है से हमेशा हाँ जो एक ही दुए ने जेड़ा से जोड़ी के रख दी है कने यही मिठास जेड़ा से अपनापन अपनापन कने अपना एहसास जेड़ा से ज़रूर हाँ जो दिन दी है। तो इसी कने हाँ भी ज़रूर इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ जुड़ी हो न कने तो हाँ सारे भी जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़िया कने जरूर हाँ पहले अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है आगाज कर लैन दे न फिर ही बाकी दियाँ जेड़ा गल्ला न तिना तुह तक ले करी आंदे न क्योंकि गल्ला बातें जेड़ा न से बिल्कुल खत्म नहीं होंदिया न पर 21 घंटे दा जेड़ा सफर है से तुह तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। तो जरूर हाँ इस कार्यक्रम कने यानी कि अपनी गलबात जो भी है तुम रोक देना कने अपने कार्यक्रम का आगाज कर देना इस गीत कने।

कशो तो इस गीत दे बोल च बोलिया खाने जो मिलदा भत्त बटूरू उचियां धारा उचियां रीढ़ियां देखने जो बड़िया प्यारियां लगदियां क्योंकि ये जड़ा गीत है

0: सारे सुनिया ये गीत शुरुआत जीना कांगड़े दा इसी कन्ने श्रोता हाँ कन्ने जुड़ चुके हो ना कर दिन तीना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, क्या हाल चाल है ना?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हाँ ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी ठीक
0: जी। तो किस तरीके ने जेड़ा तो हुंदी सैर है सरेई कने अपना जेड़ा परिचय है सभी जरूर दे दिया जी।
1: जी मैं कांगड़े से बोल रही और मैं कहने सैर तो बड़ी अच्छी हो रही
0: जी। तो क्या क्या

0: पवना जी दोहा पकवान बनायो थे। अच्छा
1: बड़ा कुछ बनाया था, पतरोड़ू पकोड़ू, फिर सब्जियां तीन चार,
0: जी
1: फिर रोटियां, फिर
0: जी
1: मिठे को गु
0: जी अच्छा, मीठे गुगु भी बनाए थे, मीठिया रोटियां भी बनाई थी।
1: जी।
0: जी ताता मुझे लगा था मुझे आना पौना है ना जी।
1: आइया तो हाली तो ऐसा रखा
0: जी अच्छा, मेरा हिस्सा जेड़ा ऐसा रखे तो हम बचाई के।
1: जी।
0: जी जी ता और बाकी क्रिया क्रिया माहौल मतलब कलकना जेड़ा दिन ऐसे क्रिया की गया तो हंदा।
1: बड़ा अच्छा रे जी, बड़े मेहमान आए जी, रोटियां खवाइयां, आपको भी खा दियां।
0: जी अच्छा, मेहमाना जो भी रोटियां खवाइया कने आप भी खा दिया,
1: हां जी,
0: बस
1: कन्ने
0: मेरी
1: गणपति जी रखियो। हां
0: जी मेरी कमी रही हो ना जी।
1: जी, तुम्हारी कमी, तुहा कल प्रोग्राम में भी नहीं आए।
0: जी जीतन तो बोला थी ना कि मेरी कमी रही ये थी ना थोड़ी सी।
1: जी, तुम्हारी
0: जी
1: कमी
0: जीता
1: थी।
0: बवना
1: हां
0: जी, और घर सारी ठीक ठाक है ना?
1: जी, ठीक ठाक हैं जी, सब ठीक ठाक है
0: जी ठीक ही चाहिए ना जी।
1: जी।
0: जी ता दिखा सैर दा ये पर्व वाली पहला दिन नहीं होया है सियाले दा, कने ठंड मुझे लगा था कुछ अपने आसार जेड़े से दसा दी है ना जी।
1: हां जी, इतने भी थोड़ी थोड़ी हुआ है, पर सवेरे से ही होंगी, कहीं शाम नहीं जाएगी, दिन
0: जी
1: तक खूब
0: जी
1: गर्मी
0: जी
1: है।
0: कने तो धौलाधार दे जेड़ा पहाड़ है सभी दिखे होने ने, तो कुथी ना कुथी बर्फ जेड़े से बर्फ दी चादर जरूर बिछी हुआ है ना जी।
1: हां जी, हां जी, बर्फबारी हुई है थोड़ी, कहीं तो ठंड हुई है
0: जी
1: थोड़ी।
0: जी जी जी जी
1: हां
0: जी तो पवना जी आज तुम कुंडिया जेड़ा गीत ऐसे सुनना है जी।
1: आज तुसा गाना सुनाई दिया, राती सोच दी गुरां दा नाम जपना, सवेरे उठी भुली वो जांदी।
0: जी अच्छा, राती जेड़े से हाँ बड़ा कुछ सोच दे ना जी।
1: हां जी, सवेरे उठ के भुली जांदे सब कुछ।
0: जी यानी कि यहाँ जो थोड़ा दिया क्या करना चाहिए, अगर हाँ जेड़ा सोच दे ना से जरूर इस पर काम करना चाहिए ना जी।
1: हां जी, हां जी, फिर सवेरे घरे के कम्मा च बिजी हो जाना, तो ना गुरु का नाम जपना, ना शिव का नाम जपना, ना अपने कम्मा च मस्त हो जाना।
0: जी नहीं, अगर तो हाँ खाना बना देना करे तो हाँ चलो अपने मुंह ची बोल देना, तो सभी एक नाम जपना ही होंदा ना जी।
1: हां जी, सह तो खाना बनाते बनाते रहना, कोई ना कोई गीत गाते।
0: जी, जरूर बबना जी, तुहदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचांदी है जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद जी, कभी कांगड़े होने हो। हां
0: जी जरूर जी, कांगड़े दी शहर भी करना ही पौनी है ना जी।
1: जी, हां जी, उन लोग दसी मित्री हाँ घुमाएंगे तो कांगड़ा।
0: जी जी जरूर जी, धन्यवाद जी
1: धन्यवाद
0: तुहंदा जुड़ने वास्ते।
1: जी।
0: जी अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर देना गल बात। हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है न
1: हां जी, ठीक ठाक जी।
0: जी? तुह कुथु दे रहने आले न, कन्ने तुहंदा नां क्या है जी?
1: मेरा नाम अजय कुमार है, मैं रहने वाला बगली।
0: जी बगली दे रहने आले अजय जी।
1: तुम्हारा सिग्नल बगली नहीं आंदा? हां
0: जी अच्छा, सिग्नल जेड़ा ऐसे नहीं होता।
1: जी,
0: जी
1: मैं फतेहपुर काम कर रहा ना, तुम्हारा? हां
0: जी अच्छा, फतेहपुर जेड़ा ऐसे तुहा काम करते
1: जी।
0: जी। ता अजय जी कदे की रहा तुहंदा सैर दा पर्व?
1: सर मैडम जी, यहाँ तो नहीं मनाते।
0: जी अच्छा, तुहा नहीं बनांदे?
1: हाँ जी, साड़ी बुआ खत्म हो गई थी।
0: जी अच्छा,
1: हाँ
0: जी
1: जी,
0: चलो त्योहार है ना जी, कई बार होंदा कि कुछ अनहोनी हुई है तो फिर ही है त्योहार जेड़ा ना से कुथी ना कुथी हाँ तीना मनाना जो छड़ी दे ना जी। जी तो बाकी कुने सद्या भी नहीं? जी जी चलो, क्योंकि अपना पन जेड़ा से इक्की दुए अंदर दिखने जो मिलता ना जी, कने त्योहार
1: हाँ
0: ऐसे से कुथी ना कुथी इक्की दुए जो जोड़ी करी रख दे।
1: जी,
0: जी तो अजय जी आज तो हाँ कुंडिया गीत जेड़े से सुनना पसंद करके।
1: गाना
0: जी जी जरूर है, गीत तो तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो।
1: सुनना।
0: जी रशो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ान दे ना कने तो हाँ जो लेकर चल दे ना फरमाइश दी और सुन दे नहीं सब प्यारी दिया फरमाइशा जो

0: श्रोताओं यहाँ गीत जिहड़े से सुनील जी तक पहुँचे है कने से रहने वाले न कोठियाँ जलोड़ती इसी कने अगले जिहड़ा श्रोता न सभी जुड़ चुके न कर दें तिना कने गल बात। हेलो हेलो हेलो नमस्ते जी,
1: आप ठीक ठाक?
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी हां जी
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहां दा नाम की है जी?
1: मेरा नाम सिया और मैं रात से बोल रही हूं
0: जी। तुहां दी आवाज कुछ क्लियर नहीं आउंदी जी, कटी कटी की आउंदी।
1: अच्छा सर, प्रॉब्लम होगा
0: जी। तुहां कुत्थों दे रहने वाले जी?
1: मैं रात से बोल रही हूं
0: जी। जी तो हाँ, आज कुंडिया जिहड़ा गीत है कुंडे फरमाइश सुननी है जी। जी कुंडिया गीत सुनना पसंद करके जी तो हाँ। श्रोताओं कोल जिहड़े से जरूर डिस्कनेक्टेड हुई हो तो अपने कार्यक्रम दे सफर च अगे बढ़ाते हैं क्योंकि सफर च कोई उतार चढ़ाव जिहड़े से नहीं होना चाहिए। जरूर तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाहां कन्ने जुड़ी सकते कन्ने आहां कन्ने गलबात करी सकते, पर कुछ गल्लां न तिन्हां दा थोड़ा जिहा तुहां ध्यान रखना है क्योंकि ध्यान रखना जरूरी है। गल आहां करिए, ये कार्यक्रम पहाड़ी कार्यक्रम है, 2 से 3 बजे तक तुहां इस कार्यक्रम च अपनी पसंद दा जिहड़ा पहाड़ी गीत है से जरूर सुनी सकते कने गलबात भी अगर तुहां पहाड़ी च करन तो बड़ी अच्छी गल है क्योंकि ये कार्यक्रम पहाड़ी है तो पहाड़ी च गलबात करके तो कार्यक्रम च जेड़ा चार चांद जरूर लगी आते हैं कने अहां भी चार चांद जरूर लगाते हैं कने तुहां भी अपनी गलबात करने जेड़ा है से जरूर इस कार्यक्रम जो सजाते हैं। तो इसी कने तुहां सारे ही ये गीत जेड़ा है से इंजॉय किया कने अहां अगर अजकने दिने की गल करिए क्योंकि हर दिन अहां वास्ते खास होंदा, अजकना जिहड़ा दिन है सभी अहां वास्ते खास है। 18 सितंबर की गल करिए 2026 की विचार जिहड़ा है से तुहां तक पहुँचाना है क्योंकि कुछ लाइना जिहड़ा ना से अहां जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानियां ना। सफलता की जिहड़ा शुरुआत है से अहां छोटे कदमां कन्नै करदे ना तो कुत्थी ना कुत्थी अहां अपनी जिहड़ा सफलता की शुरुआत अहां छोटे कदमां कन्ने कीती कन्ने जिहड़ा सफलता तक अहां जरूर पहुंची जांदे न क्योंकि अहां पर निर्भर करदा है कि अगर अहां कोई भी काम करा दे न या करना लगे न या अहां जो कोई काम होंदा नहीं है कन्ने अहां सिखा दे न तो जरूर अगर अहां तिस च पूरी लगन मेहनत ने तिस कम्मे जो सीख दे न तो कुथी ना कुथी अहां सफलता की सीढ़ी तक जिहड़ा है से जरूर पहुँचते न कने कदम जिहड़ा है से अगे अहां जो ही बढ़ाना पौने न क्योंकि स्याहां दे कदमां पर निर्भर करदा है कि अहां किस तरीके ने अपने जिहड़ा कदम रखदे न या अपने कदमां जो पिछे लैंदे न या अगे लैंदे न। पिछे लैंदे न तां अहां अपने जीवन जो जिहड़ा है से या अपनी सफलता जो अस्थिर करींदे न। ते इसी कन्नै अगले जिहड़ा श्रोता न तिन्हां कन्नै करदे न गलबात। हैलो
1: हैलो
0: हैलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते, मैं सापर से प्रिया बोल रही हूँ
0: जी। प्रिया जी कुथु ते बोला दे तो हाँ?
1: मैं सापर से
0: जी। अच्छा शाहपुर
1: शाहपुर
0: शाहपुर शाहपुर
1: जी जी
0: जी जी। ता प्रिया जी कदिया लगा था तो हाँ जो ये कार्यक्रम?
1: हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाहती हूँ आप एक गीत सुनाए हमें हमारा मन पसंद।
0: जी जरूर जी, कुंडिया गीत सुनना जी तो हाँ।
1: एक जोड़ा सूटे दा
0: जी, एक जोड़ा सूटे दा जी जरूर जी। तुहंदी जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचानी है जी कने तुहंदा जिहड़ा सैर दा पर्व है तुहां कल बनाया तां सिक दिया की रहा तुहंदा?
1: वो बहुत अच्छा था, हमने बहुत कुछ बनाया था, पतरोड़ू बनाए थे, दाल के पकौड़े बनाए थे, पूरी आलू
0: जी जी।
1: आपने क्या बनाया था
0: जी? अहां भी जिहड़ा तुहां गल कीती फिक्कियां रोटियां, मिठियां रोटियां, बबरू, पतरोड़े जी जी
1: जी जी। और एक गाना, एक गाना और जिंदगी बड़ी सोनी है ये भी प्ले करना
0: जी तो आज तो तुहदी जिहड़ा एक ही गीत जिहड़ा है से मैं प्ले करी सकदी जी, कुंडिया जिहड़ा तुहां सुनना है
1: जिंदगी बड़ी सोहनी है ये वाला गद्दो।
0: जी अच्छा, जिंदगी बड़ी सोहनी है जी, इस गीते दी क्या खासियत है जिहड़ा तुहां जो इतना पसंद है?
1: मुझे काफी पसंद है, मतलब जब ऐसे बैठे और मुझे सुनना काफी पसंद है, मूड अच्छा हो जाता है।
0: जी जी जरूर जी, तुहदी जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: ओके थैंक
0: जी
1: यू।
0: जी ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने। इसी कन्ने हम फिरी ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न, कन्ने तुहां जो लेकर चलते न अगले गीत दी ओर, अगली फरमाइश दी ओर। ये फरमाइश अह तक पहुंची हो है कांगड़े ते, कन्ने तिना दा नाव है पवना जी। पवना जी तक अह ये गीत पहुंचा देन, तुह सारे भी इंजॉय करा।

આંબોલા દીન રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તે કને તો હા સારે ઇસ વક્ત કાર્યક્રમ સુના દીન આપની રેડિયો તો શશી કને ફિરે તે હા વાપિસ આયો ના આપની ગલબાત ઉપર કને સમય દિયો ઓર અગર નજર દોડાઈએ તા 2:28 કાર્યક્રમ જો અહીંયા ને તા સમય દે અનુસાર ચલના ભી જરૂરી હૈ આજ હા ક્યા ખાસ દિવસ બના દીન યા ક્યા અજકણા જેડા ખાસ દિન હૈ क्योंकि हर दिन दी खासियत है। आज अहां जिड़ा खास दिन बना देन से बना देन विश्व वांस दिवस तो जरूर तो सारे भी जिड़ा इस दिने जो जरूर इंजॉय करा दे उन्हें या जागरूक हो दे उन्हें कि वांस का जिड़ा अहंदे जीवन च क्या महत्व है या क्या फायदे न या क्या नुकसान है। हर चीज़ का जिड़ा हर दिने दी अहां गल करिए तो कुथी ना कुथी इस दी खासियत जिड़ा है से अहां जो पता चलती है कने अहां जरूर तुह तक अपनी जिड़ा गल बात है से भी पहुंचा देन कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कने जुड़ी सकते। इसी कने अहां फ्री ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है कने तुह जो अगली फरमाइश दी ओर लेकर चल देन अगला जिड़ा गीत है अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देन।

0: श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ये गीत फरमाइश। अजय जी तक कहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने से रहने वाले न बदली ते। इसी कन्ने तो सारे ही इंजॉय करा दिन कार्यक्रम माटी दी महक। फिर ते तो सारे दा इस कार्यक्रम च स्वागत है, क्योंकि स्वागत तो हाँ कोई भी आंदे घर है मेहमान आते न तिना दा भी जरूर करते न कर देना तो हाँ भी, क्योंकि अहां दे जेड़ा संस्कार हैं से अहां जो हर दिन कोई ना कोई जेड़ा सीख है से दिन देन कने छोटी छोटी गल्लां ना, वैसे तो सोचने वास्ते छोटी छोटी गल्लां ने पर सबक अहां जो बड़ा कुछ दे करी जांदियां, क्योंकि अहां दे जेड़ा संस्कार हैं से किस तरीके ने रहंदे न से अहां पर निर्भर करदा है। तो इसी तरीके ने तुहां भी अपने जेड़ा संस्कार हैं तिना दा जेड़ा किस तरीके ने जिहड़ा अहां दे माता पिता अहां तक अच्छा जिहड़ा ज्ञान है या अच्छे संस्कार पहुँचाते हैं कने अहां किस तरीके ने तिना पर काम करते हैं। इसी कन्ने अगले जिहड़ा श्रोता है तिना कन्ने करते हैं गलबात। हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला जी। ठीक ठाक है न?
1: बढ़िया धन्यवाद जी।
0: जी तो अपने रेडियो सेट की आवाज कम करी लेंगे जी?
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
0: जी, कर ली तो हाँ आवाज कम।
1: हाँ जी
0: जी, तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हाँ दा ना क्या जी?
1: ऐसा तो नरवाने ते बोला दे सड़ा ना है बबलू कुमार
0: जी। नरवाने ते बोला दे बबलू जी।
1: हाँ जी
0: जी, ता बबलू जी एक दे की रही तो हाँ दी सैर
1: ये सैर जी ठीक ठाक हर सार सारे जो बस नहीं आवे
0: जी जी अपना अपना तरीका होता ना जी बनाने जी, पर आज ने दौर की गल करिए या क्योंकि ज्यादातर बच्चे खाना पसंद नहीं करते ना जी। अगर अपने बुजुर्ग से पुछते जो ये बोल दे की अहां ता तरसरा परिक्री या डल परिक्री जेड़ा से रोटियां दा बनाई रख दे थे ना जी
1: पहले। हां जी हां जी पहले होता है
0: जी जी जी, तो उस टाइम तीना दी सेहत भी
1: पैर बलने जी जी
0: जी जी, क्योंकि यहाँ अगर अपनी गाल करिए तो कुछ ना कुछ यहाँ जो खुद जो ही पता लगी आंदा कि यहाँ इतना ही जड़े से खाई पाना है ना जी। जी जी, तब बबलू जी तो हम जो कदया लगा था ये कार्यक्रम माटी दी महक
1: बिल्कुल बढ़िया जी। हाँ तो जुड़े रहेंगे रेडियो कुंज करने
0: जी। अच्छा रेडियो
1: शामी चार बजे हाँ अपने सचिन भाई करने जुड़ना
0: जी जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, चलो अच्छी गल है जी जी। तो आज तो हम कौन दिया गीत चिड़ाई से सुनना पसंद करके
1: लाना चाहिए दे लगी है चढ़ाइयाँ शिवा रे कला
0: जी। लगी है चढ़ाइयाँ शिवा रे
1: कला
0: जी जी, जरूर एक गीत फरमाइश तो हम तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हम
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। थैंक्स। तो श्रोताओं तो सारे भी जल्दी जल्दी क्या करा बोलना हमेशा जेड़ा ए बोल दी ने कि जल्दी जल्दी अपना मोबाइल फोन चुका कने नंबर जेड़ा ऐसा डायल करी लिया, क्योंकि नंबर डायल करके ताई तो हाँ गलबात करी सकते अपनी पसंद का जेड़ा गीत ऐसे सुनी सकते। नंबर है 7018117091 नंबर तो हाँ तक पहुँचाई था कने बाकी जेड़ा काम है से तो हाँ ही है। तो इसी कन्ने गलबात जेड़े से अहां करा दे थे कि आज अहां खास दिन भी बना दे कने कुथी ना कुथी जेड़ा कल तो हां सारे ही बड़ा ही जेड़ा प्यारा दे पर्व भी इंजॉय कीता है, तिदे उपर भी थोड़ी देर गलबात करा दे श्रोता कन्ने कि किस तरीके ने तिना दा जेड़ा कलकना दिन ने से गया कने किस तरीके ने तिना से पर्व जेड़े से बनाया। अगले जेड़ा श्रोता ने सभी जुड़ी हो न कर दें तिना कन्ने गलबात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी। जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना? तो कॉल जेड़े से डिसकनेक्टेड हुई हूँ, तो गलबात जेड़ा चली थी जेड़ा आज हाँ खास दिवस बना देना, बांस दिवस जेड़े से जरूर आज हाँ बना देना, कने तो हाँ भी इस जो सुना देने ने या मेरी गलबात जेड़े से सुना देने ने। विश्व बांस दिवस जेड़े से हर साल 18 सितंबर जो जेड़े से बना देना, कने अगर हाँ पर्यावरण की गल करिए या जेड़ा पर्यावरण की अर्थव्यवस्था की गल करिए, तो इस क्या

बांस का जिहड़ा महत्व है से रहिंदा है। ये जिहड़ा पौधा है से तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, ना इस जो ज़्यादा पानी की जरूरत होंगी, कने जिहड़ा पौधा है से जल्दी जल्दी जिहड़ा है से अपना मतलब बढ़ता है, कने इसी कने जिहड़ा पर जिहड़ा ऑक्सीजन की अहां गल करिए 35% की अधिक तुलना च जिहड़ा है से ये ऑक्सीजन जिहड़ा है से प्रदान करता है, या पेड़ों की तुलना च जिहड़ा है से अहां जो ऑक्सीजन जिहड़ा है से दिंदा है। कने तो सारे भी अपने आस पास भी दिखते हैं, कने बांस का जिहड़ा फायदे भी हैं, या अच्छे बुरे की गल करिए तो तुह सारे जो ही पता है। तो इसी कने अहां भी अपने कार्यक्रम के सफर जो अगर बढ़ाते हैं, कने तुह जो थोड़ा जहा फ्री तो अगे की ओर ले करी चलते हैं। हूँ तुह इंतजार जिहड़ा है जरूर करा दे उन्हें नहीं कि अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुह तक कुंडे यहाँ पहुँचानी है। तो अशो तो अहां भी तुह तक तुह दी जिहड़ा फरमाइश है से जरूर पहुँचाते हैं, कोशिश जरूर करते हैं। तो इसे ही कोशिश जो अहां जारी रखते हैं, कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देन। थोड़ा जिहा जिहड़ा बोलते ना इंतजार तुह जो होंदा, जरूर पहले इस गीत दे बोल सुना, फिर तुह समझ ही आना है कि यह गीत अहां कुछ तक पहुँचाना है, फिर ही बाकी दी जिहड़ा कहानी है सभी तुह तक पहुँचा देन।

ये तो सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे ये गीत इंजॉय कीता। जिंदगी सोनी है तो जरूर जिंदगी जेड़ा है से सोनी है तो सारे जो ही पता है, पर आ किस तरीके ने अपनी जेड़ा जिंदगी है, जिंदगी दा जेड़ा सफर है उस जो तय करते न या आज कने दिन जो इंजॉय करते न। प्रिया जी तक ये जेड़ा गीत है से पहुँचाया कने से रहने वाले न शाहपुर ते, तो जरूर कने जितने भी बाकी श्रोता है ना तिना तक भी यहाँ ये गीत जड़े से पहुँचाया। तो सारे कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक कने गलबात भी सुना दे उन्हें ना कने अपना जेड़ा इंजॉय है सभी करा दे उन्हें ना। प्रिया जी ने ये भी बोलिया कि हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद है, कई बार ये जेड़ा गाने न सियाहां दे चेहरे पर समाइल जेड़ा है से ले करी आंदे न, या हाँ जो कुछ जड़ा याद न तिना कन्ने जोड़ी करी रखते न। तो इस गीत दे बोल च एक एक जड़ा गल है से कुथी ना कुथी दिल जड़ा से दिले जो छुई आती है। श्रोताओं तस्वीर खिंचया करो क्योंकि तस्वीर खिंचना भी जरूरी है न। कई बार सही तस्वीर जड़ा न सही यादा बनी करी रही आंदियां न, या याद दे थ्रू अहां कोई भी जड़ा व्यक्ति है से यहाँ कन्ने जुड़िया कने से यहाँ दुनिया जो चलू छड़ी करी जानता है, तो कुथी ना कुथी अगर तिस व्यक्ति दी जड़ा तस्वीर है से यहाँ ले तो हाँ बार बार तिहा तस्वीर जो इतना दिखते न कि जितना हाँ जड़ा है से कदी बाकी और चीज़ जड़ा है से ना दिखियो मैं कने सही कुथी ना कुथी यहाँ दियाँ जड़ा यादा न से ताज़ा हो जाए न, चाहे खुशी है चाहे गम है, क्योंकि जिंदगी दे दो पहलू हैं सुख दुख, हंसी गम खुशी, या हर दिन अहाँ किस तरीके ने जीन देना या अगला जिड़ा दिन ऐसे अहाँ दा किस तरीके ने होना है। पर आज कने दिने जो अगर अहाँ खुली करी जीन देना तो अहाँ हर दिन बेहतर तरीके ने जी पाते न। तो तुह सारे भी आज कना जिड़ा दिन है से जरूर इंजॉय करा देने न, कने कल कना जिड़ा दिन है पिछला जिड़ा दिन है तुह जरूर 17 सितंबर वाला जेड़ा दिन है से फुल ऑन इंजॉय किते होना है कने फुल ऑन मस्ती की होनी है, क्योंकि बचपन दियाँ कुछ यादा कुछ शरारत जेड़ा सैर दा पर्व है तो हाँ बड़े ही धूमधाम ने बनाए होना है। कने उसकी एक खासियत है कि अगला अगर हाँ अपने गाँव की गल करिए गाँव च जाई जाई करिए हाँ बड़िया जड़ा प्यारियां प्यारियां रोटियां न, मिठियां रोटियां न या फिक्कियां रोटियां न या चने की दाली के पकौड़ू हैं या मां की दाली के पकौड़ू हैं या बाकी जड़ा अरवी या कचालू दे जड़ा पतरोड़ू हैं सेवन कुथी ना कुथी अहाँ जो एक ही दुए ने जोड़ी करी रखते न। दिखा कितनी खास गल है ना अहां दे जिहड़ा हिमाचले दा पकवान है या जिहड़ा गाँव की खासियत है से हमेशा एक दुए ने जोड़ी के रख दी है। कने अहां दी जिहड़ा बोली है सभी अहां जो कुथी ना कुथी एक दुए ने जोड़ी करी रख दी है। तो जिंदगी क्या बोलती एक दुए दा मेल मिलाप होना जरूरी है, पर आज कने दौर की गल करिए ये चीज़ जिहड़ा है से बिल्कुल कम है कुथी ना कुथी। तो जरूर अहां दे जिहड़ा बजुर्ग हैं सभी अहां जो अपनी जिहड़ा कहानियां ने जिहड़ा तिन्हां दा बचपन है या तिन्हां दियां जिहड़ा यादां ने से अहां कन्ने जरूर शेयर करदे ने कि अहां दी जिहड़ा बचपन है से इस तरीके ने होया या हाँ अपने बचपने च जिहड़ा त्यौहार है से इस तरीके ने बनाया। तो अहां जो भी सुनी कर थोड़ा जिहा अच्छा लगता है कि वाकई में जिहड़ा त्यौहार हैं से जरूर अहां जो एक दूए ने जिहड़ा है से हमेशा जोड़ी करी रखते न। तो जरूर अहां भी तुह जो रेडियो गुंजन धर्मशाला कने जोड़ी करी रखना है कने अगला जेड़ा गीत अगली जेड़ा फरमाइश है से अहां पहुंचानी है बबलू जी तक कने से रहने वाले न नरवाणी ते।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इसी कन्ने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न

ये सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दो शशि कन्हैया। दर्शकों तो सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जो सफर है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो इसी कन्हैया तुह सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कन्हैया सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: नमस्कार
1: वत्सन साहब आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया हमें डोनेशन
0: ये छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: Yeah, sure.
1: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
10: ये क्या कर रही है?
11: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
10: ये केले के छिलके की?
12: Oh, no.
11: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
10: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
11: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?
13: नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

0: नमस्कार
1: वत्सन साहब आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया हमारा डोनेशन
0: ये छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ, समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: पुलिस पुलिस कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर, ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
2: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़े, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
3: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
4: कब देवी?
3: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
4: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
3: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
4: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
3: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
4: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
3: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
4: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
5: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
6: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
7: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और तेल।
8: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
6: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर मुंह बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
7: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
9: ये क्या कर रही है?
10: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
9: ये केले के छिलके की?
11: ओह नो,
10: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
9: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा, और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
10: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला। तो ये सभी ट्यून कर रहा हूँ और सचिन कपूर बिल्कुल हाजिर बुझको तुम दे सभी रे रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो ये सब जरूर खुश बुने, तंदुरुस्त बुने हिन और ठीक ठाक बुने अपने घर है। श्रोतों कार्यक्रम मंच हिंदी अपनी गप्पा मंच बहुत सी गल्ला बुनिन, बहुत सी जानकारी के इनसो भी असू तुसो की जरूर शेयर करनी हिन और जानकारी सो किसो की श्रोतों। जी बिल्कुल, जानकारी सो किसो की किया सो और भी बहुत सारी चीज़ें के इनसो शेयर करनी हिन। सभी पहले धर्मशाला रा मौसम की सो असू जानी लेना है, बिल्कुल जानी लेना है। आज पूरा दिन के सो धूप लग रहे थे शो, तो है ना पूरा दिन के सो मौसम धुप्पाड़ा के आसो रे हुआ। इस समय गल करूँ हूँ श्रोतों तो लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के आसो तापमान है और 73% के आसो ह्यूमिडिटी है श्रोतों। तो मौसम रे जानकारी है और यह कार्यक्रम मंच श्रोतों सब श्रोता के ना सो आगाज जरूर करी लेंदन कार्यक्रम रहा और आगाज तो बाद फिर श्रोतों बाकी सभी री फरमाइश है जरूर पूरी कर ले। आइया हुन तू सभी जो प्यारे दे गीत तुंदे सभी रे रेडियोस

0: শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন করো আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পা কেন সো চল রই ইন শত আইয়া কার্যক্রম জো হগো বড়ন্দে হিন আর শত কল রি চিন্তা করনা ভি জরুরি হা লেকিন কল রি চিন্তা ইতনে ভি মত করা কি তো হ্যাঁ আপনা আজ কে সুখ হয়ে দে শত কয়ো কি जो बीती को अशो तो तस वापिस ता हीणा नहीं है ना और इने आला अपना किया अशो तो इने आला अपना दिन किया इने आला अपना टाइम किया सो सोची सोची विचार करी करी कि सो तस हिम्मत खराब करा अशो तो है ना और सफलता पाने वास्ते कि सो सू पता कि नियंत्र और सच्ची मेहनत करनी ही पैंती है अशो तो कोई शॉर्टकट के सो ना चलता है लगातार मेहनत के सो जरूर करना पैंती है अशो तो और मेहनत रा फल बंदन की मिठा भी किया सो जरूर मुंदा है। बहरहाल अशो तो इन श्रोतागण हसू के कनेक्टेड हैं और तो सब श्रोता जरूर कॉल कर सकते हैं ऐसा इस नंबर मन 708-8-8-709 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर करना 708-8-8-709 पर आइए इन श्रोतागण हसू के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते।
1: हेलो
0: जी। हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक
1: ठीक ठाक जी। बढ़िया तो ना।
0: बढ़िया जी बढ़िया। ठीक ना है भी ठीक ना तो है दसा।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: करे लग रहे हैं
1: बस कुछ नहीं बैठे हो क्या पी जा रहे।
0: अच्छा कैलू रहे कमाना
1: क्या पी लिया।
0: बस जी चा ता पिंदे नहीं ना है। हाँ जी कुंदन गीत हुनना पसंद कर ले।
1: बरमानी माता सुनाई है आज कल नौन है।
0: बरमानी माता।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: चला ठीक है जी जरूर हुन ले।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी धन्यवाद। अगले श्रोता सूगे कनेक्टेड हैं पुछ दिन कुंड बल्लुंदन और कड़ी तो नमस्ते जी।
2: हेलो।
0: हेलो नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
2: सुभाष वल्लू करता जी खड़ोते हो।
0: अच्छा जी सुभाष जी ठीक ठाक। राजीव जी
2: जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो हमारा
0: कर लुगरेन है भी ठीक ना जी।
2: बस देखो रे आज निकल जा पूरे परेशान में धूप है।
0: हां
2: बिल्कुल लंदे आई धूप है।
0: बिल्कुल बिल्कुल अबे सेकने वाली धूप चली आई ना हल्की हल्की ठंड के तो महसूस बच्चों करते है ना जी।
2: हां जी हां जी हां जी इन पास से ठंड भी छुरी समझ रहा है बड़ी ठंड है।
0: अच्छा
2: हां
0: तां भी ठीक है।
2: जी जी अब इनते जन्म ले लेऊ ना अबे ठंड हो गई यार।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ले लो।
2: हां जी
0: तां
2: अच्छा जी
0: कुंदिने गीत सुनना पसंद कर ले।
2: गीतरना जी मगड़ू री छेड़ एल्बम तो सो आते।
0: चलिए श्रोतो कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे और फरमाइश रा दौर गया सो बिल्कुल पूरा कर दे भरमाणी माता रा गीत किया सो जरूर हुंदे बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे।

0: Shoto FM band ikyan with Shamlab. दुई मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गया ने सो तुंदे वीडियो सेट में गया सो बिल्कुल लाइव चल रही इन शो और कार्यक्रम मंच तो है सब के ना सो बिल्कुल जुड़ रहे हिन तो इन दे श्रोतागण के ना तैयारी फरमाइश है बिल्कुल पूरी करू कर दे इन शो और दत्ते हाँ बिल्कुल दत्ते ना फिलहाल अब जो कॉल आया तो कनेक्ट कर दें और दो दिन नबे तो थोड़ा रिकॉर्डेड कार्यक्रम के सो होना पैना इनका जो कि दो तय है चलबीरो इन श्रोतों चंडीगढ़ और फिर वापस इन दिन सोमवार जो तो की मुलाकात के सो जरूर कर ले फिलहाल था इन अगले श्रोता सो के कनेक्टेड इन पुस दिन कौन वल्लू दिन और कड़ी था वल्लू कर दिन नमस्ते जी
1: नमस्ते
0: नमस्ते
1: ठीक न
0: ठीक न तो बल्ला तो ठीक न
1: जी
0: कौन बल्लू दे और कड़ी थम बल्लू दे
1: करण बल्लू तो बगाड़े हूँ
0: करण बगाड़े थो क्या कम कर लू रे करण जी तो है
1: कुछ ना कुल वान दे बर्दी बुर्दी खोल दे रहा
0: अच्छा आज क्या क्या है पढ़ुआ स्कूल है
1: हेलो
0: हेलो मैं बोलू आज क्या क्या पढ़ो तो है स्कूल है अच्छा करण जी आवाज नहीं छू कर दे तुंदे हाँ जी करण जी तुंदे जी सिग्नल ना बंदा जड़ियां तो कॉल कर दे ना हसू आवाज ना क्लियर है चुकर दे धन्यवाद जुड़ने वास्ते अगले श्रोता जो कनेक्ट कर देन नमस्ते जी माफ करे श्रोतो कार्यक्रम तो सब आरजे सचिन कपूर सो के हुनो कर देन और बर्फबारी और ठंड लेकर आए सैर श्रोतो जी बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में सैर संक्रांति रे सोगे मौसम में भी किया सो करवट बदले लिया ऐसो तो पिछले कुछ दिन था कि सो धीमे धीमा प्यूरा मानसून जो आशो तो सो आख मुख है फिर सक्रिय भूने तो प्रदेश में कई हिस्सों में तेज बरखा भूने सोगे सोगे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में के सो बर्फबारी होने भूने थो पहाड़ में ठंड रहा असर किया सो बड़े गो आशो तो बर्फबारी रे चलते लाहौल स्पीति में आख पवित्र पर्वतरी परिक्रमा कर दे दुई महिला श्रद्धालु री मौत के असो बच गए अशोतों रोहतांग दर लाहौल स्पीति भी ऊंची चोटी और चंबा रे मणिमहेश क्षेत्र में हिमपात भुआ अशोतों और शिमला सहित कई मध्य पर्वतीय क्षेत्र में किया सो बिजली बुजली चमके बरखा वगैरह किया सो भोए अशोतों अगले दो दिन भी कोई क्षेत्र में क्या सो बरखा नहीं हाशो तो सो दसना चाहते कई क्षेत्र में तेज बरखा और आंधी थों किया सो मनोरी परेशानी की है श्रोतो सो बड़े हा बरहाल इन अगले श्रोता सो गए कनेक्ट लगे इन बूणा पुछ दिन कौन बोलूँ दिन और कड़ी थों बोलूँ दिन नमस्ते जी
2: नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते जी कौन बोलूँ दिन और कड़ी थों बोलूँ दिन
2: मैं
0: शानवी
2: बोल रही हूँ
0: शानवी जी क्या है पहाड़ी में या गद्याली में गल कर सकते हैं
2: हाँ जी
0: अपनी लोकल लैंग्वेज में है लोकल डायलेक्ट में है गल कर सकते हैं
2: हाँ जी पहाड़ी में
0: हाँ जी बिल्कुल तो है पहाड़ी वाला कौन देने गीत होना है दस्सा पहाड़ी मंच
2: भोली का गाना सुनना
0: हाँ जी
2: भोली का गाना सुनना
0: ठीक है जी नमस्ते
2: सारे नमस्ते
0: चलिए श्रोतो कार्यक्रम जो है भी थोड़ा करे हागू किया सो भड़ंदे हिन और तो सब बन रहे इस समय एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगे और हिंदी अपनी गप्पा जो हूणू करते हैं बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और इन द अगले श्रोता भी अस हो गए कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
3: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
3: नमस्ते जी। सचिन जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी। कौन बोल रहे हैं?
3: तो हाँ, तो हाँ, तो जरा गलान बोल रहे हैं ना।
0: जी जी।
3: ओ हाँ, बड़ा प्यारा लगता है।
0: थैंक यू जी, धन्यवाद।
3: वो नहीं यार, ये हाँ बोला देखने आ रहे थे।
0: अच्छा अच्छा।
3: हाँ, तो तुम्हें क्या दसनी फरमाइश ना।
0: जी जी।
3: तो हाँ, अपू हैं खुद दसीन दे सुनाइन दे गाने हैं।
0: जी।
3: अपन एक गाना हाँ दस दे तो हैं।
0: जी।
3: गाना तो नहीं अपन दे गुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया।
0: गुरा ने जगाया बंदा फिर सो गया।
3: हाँ जी।
0: ठीक है जी, जरूर सुन ले तो सोए गीत है।
3: हाँ
0: जी। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक,
3: धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
3: साड़ी जेड़ा लैंग्वेज है ना।
0: जी जी जी।
3: ओ यहाँ बड़ी प्यारी लगती है।
0: ठीक है जी, सौभाग्य सौभाग्य इंदा। थैंक यू जी।
3: मैं इस समय कुछ से बोल रही है ना।
0: जी।
3: जसूरे से बोल रही मैं।
0: अच्छा।
3: हाँ जी।
0: अच्छा, इस टाइम जसूरन।
3: हाँ जी। ठीक ठीक
0: ठीक है जी।
3: दूर तक गाना तो पंजाई जाना भाई हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: हाँ जी।
0: ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए श्रोतों, कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंज लेके चलते हैं। अभी तू सभी जो फरमाइश हरी इस कनारी।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप गए ना सो चल रही हैं ता कार्यक्रम मंच एक मौके फिर कुछ एक खास जानकारी दूसरों की शेयर कर दे इन श्रोतो श्रोतो मिनी मनी महेश नडी डल झील माँ दत्ते किया सुस्ताई स्नान हाँ ऐतिहासिक डल झील में पहली बार महाआरती का आयोजन शुक्रवार जो भूना हा माफ करा आज किया सुबह चिगो हा सोगी ही 19 सितंबर जो ही निकी दुत्ते के शोतों शनिवार जो झील में शाही स्नान भूना हाँ दुत्ते शाही स्नान किया सो दुत्ते शोतों मान्यता रे अनुसार अगर हम गल करूँ तो डल झील में स्नान करने तो चंबारी मणिमहेश यात्रा रे समान ही पुण्य किया सो पुण्य फल री किया श्रोतों सो प्राप्ति बंदिया आखिर लंबे अरसे थो बाद नडी डल झील में हजारों श्रद्धालु किया सो शुद्धतारी डुबकी किया सो दुत्ते लाने हाँ श्रोतों इतों पहले डल झील रे अति दयनीय हालत भूने रे कारण आयोजन भी सुचारू रूप थो किया सोना बंदा तो श्रोतों आज के श्रोतों सो आरती रे अवसर पर एंटी चिट्टा वैली भी निकाले हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी भूने हैं और युवा जो जागरूक करने वास्ते टिंगल बोर्ड थो डल लेक तक किया सो एंटी चिट्टा रैली निकालनी हाँ श्रोतों।

शाही स्नान रे दौरान श्रद्धालु वे भारी संख्या जो ध्यान में रख दे हुए सुरक्षा वे कड़े इंतजाम के न सो करें छो तो किसी भी अप्रिय घटना जो रोकने वास्ते झील में आके सो SDRF री टीम के असो भी तैनात भुने अशोतों मेले में पूर्व संध्या में आज भी के अशोतों सो सांस्कृतिक कार्यक्रम रा आयोजन के सो भुना जति में स्थानीय कलाकार जो मंच दी करी के अशोतों सो क्षेत्र में के सो समृद्धि लोक संस्कृति जो प्रोत्साहित करना है अशोतों दुवेश्वर महादेव मंदिर रे पुजारी सुभाष शर्मा ये दसो अशोतों की 19 सितंबर शनिवार जो भेगा 4 बजे के सो कलाश पूजन और शंख ध्वनि वे सोगे किया झील व जल रा शुद्धिकरण भूना हा इतों उपरांत विविध स्नान आरंभ भूना हा अशोतों स्नान तो बाद श्रद्धालु झील किनारे स्थित प्रसिद्ध शिवी दुवेश्वर महादेव मंदिर में मत्था टेकी कर आशीर्वाद ले सकते हैं। डल झील में के अशोतों सो आयोजित वादाष्टमी मेले वे दौरान उपमुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया मौजूद भूणहीन और अशोतों बिल्कुल जो वैली ने कडिया चिट्टा रैली रा आयोजन किया सो बुजुर्ग छूरा हा अशोतों और डल झील में पूजा अर्चना भी बुझ छोड़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम रा आयोजन किया सो संजय 6 बजे भूणा हा अशोतों यह लगी प्यूरा भूणा हा एग्जैक्टली ना बोले सकते जो कि सो ऑर्गेनाइजर रे मर्जी बंदे की कहने भी कि सो शुरू कराई दिया तो बहरहाल ऐ थोड़ा करे आगू चलते इन अशोतों तो सब बन रहे ने इस समय RJ सचिन का बूट सो की और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो बिल्कुल लाइव हूँ करते हैं अपने अपने रेडियो सेट में लेकर चलते हैं श्रोता तू सब भी श्रोता जो इस प्यारे दे जो कि एक फरमाइश आई थी कि भोले शंकर जी का गीत किया सो हूं ना था हूं ने प्यारे दे गीत उन्हें वीडियो सेट में

आयुषा तो ऐसा बी ट्यून कर रहे समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव होनू करते हैं अपने अपने वीडियो सेट में यह फरमाइश जो भी पूरा करी लेंदे छो तो फिर तथों बाद जानकारी रा पिटारा के असो खोल दें छो तो

0: छोटा एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉर कार्यक्रम आर जे सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव हूँ कर देने अपने अपने रेडियो सेट में रेडी गुंजन धर्मशाला मंच तो तुम अब थोड़ी करी अगली जानकारी के सो तुस होगी यह साझा करते हैं सहायक अभियंता विदित अभिषेक कटोजय जानकारी देते हैं श्रोतों के कंडक्टर जो केबल में बदलने और ज़रूरी रख रखाव हेतु 19 सितंबर जो डिपू बाजार लॉर डिपू बाजार सिविल लाइन रे आसपास रे क्षेत्र में के भग 10 बजे लेकर संजा 5 बजे तक किया सो विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रहने हैं। मौसम खराब होने पर शटडाउन अगले दिन किया सो बुझ सकता है श्रोतों ये जानकारी तो सब हूँ कर दिन रेडी गुंजन धर्मशाला रे माध्यम थो और यह जानकारी जो आऊँ सचिन कपूर की असो ब्रॉडकास्ट करूँ करता हाँ इस वक्त श्रोतों इन द्रोतागण असो के कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दे हिन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते भैया।
0: राधे राधे जी। राधे राधे। बहुत बढ़िया जी। कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन। अच्छा और अंजना जी ठीक ठाक ने राजीव बाजी
1: ठीक बाए बढ़िया फर्स्ट क्लास
0: करे लगुरेन
1: ए रवा सारा खना रे है दाना दुने रे इंदे लकी ने के भुवे
0: अच्छा अच्छा अब तो गागो बढ़ने री तैयारी बुनी ना ना
1: हां मिल ले री बिंदे गा की पुल लगा ये तो एरी बिंदे
0: आराम बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: शरीर तो यार कि ना गोतुंदा
1: बढ़िया बड़ा चार गो
0: अच्छा
1: जी दादी माता को शुरू किया
0: क्या बात है शरीर वाले दिन
1: है जी
0: हेरी वाले दिन है हेरी बन दिन
1: हेरी जो हेरी सिरगांड आओ
0: हेरी री सिरगांड अच्छा क्या बात है दादी माता ले गिचाए मत्था टेकिया है
1: जी मेरे पूज्जी ने माता बचाई
0: हां बिल्कुल बहुत जरूरी भी है अच्छा और सब ठीक ठाक ने नॉर बोलेंगा तुम्हारे घर परिवार ठीक है
1: सब खराब है
0: अच्छा जी अंजना जी कुंदने गीत हुनना पसंद कर ले अपना कार्यक्रम मंच
1: गाना भाई सिद्धि लगाना होना ही दिया दत्ते ना होना ना
0: दत्ते ना होना बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ
0: चलिए लोटकियो हुनना जी
1: होना ही चली शुरू नहीं रहना होना आ रहा नहीं रहा नहीं रहा
0: चली गई सुरेन अच्छा
1: चली सुरेन
0: क्या बात है मणि महेश चली गई सुरेन
1: हां जी ओके चली सुरेन तक जा सो दस बजे की सुरेन
0: अच्छा क्या बात है चलिए ठीक है जी बड़ी बड़ी मुबारक हूं दत्ते नु होना री दत्ते दा सु बुना ने सु चंडीगढ़ चली गाना मुबारक दे दे ना
1: चंडीगढ़
0: ऑफिस ऑफिस रे कम मत हूं गाना ना जी
1: अच्छा चंडीगढ़ घूमिए गर्मी तो खूब होनी
0: हाँ काफी गर्मी है
1: लगभग नहीं गर्मी लगी
0: हाँ जी हाँ जी
1: अच्छा होना है भाई लोट की बात होना है दिया
0: ठीक है अंजना जी जरूर होना ले
1: ठीक है भाई ठीक है धन्यवाद
0: धन्यवाद जी श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रही वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस वक्त दिन दी अपनी गप्पा हूँ कर दें तो सब सचिन कपूर सो गए हाइया कार्यक्रम जो होगा बड़े दिन श्रोतो और इस पेवे दे गीता जो होने लेंदे हैं श्रोतो बने रही आर जे सचिन कपूर सो गए गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा गेंद सो चल रही थी शोतों तब समय बचे को तुसु सब भी थमाल विदा लेने रहा तुसु सब भी जो टाटा बाय बाय बलने रहा शोतों गंदे गंदे बस सही बलना चाहूँ तुसु सब भी जो कि हंसते रहे मुस्कुर रेंदे रहे और वेड़ी गुंजन मार जे सचिन कपूर से होंदे रहे माँ बाप री सेवा शोतों जरूर करा हेरा कुछ करने रहा कुछ बढ़ने रहा वो कुछ करने रहा मौका मुड़ा ना मुड़ा कुछ बने तो जरूर गच्छा कमाई तो जरूर लिया लेकिन माँ बाप री सेवा किया सो जरूर करा शोतों जहने मौका मिलता जड़ी मौका मिलता तड़ी माँ बाप री सेवा किया सो अवश्य करा जरूर करा बहुत इंपॉर्टेंट है शोतों माँ बाप री सेवा करना मतलब मेरा ये मनना पर्सनली शो तो अगर तो है माँ बाप री सेवा करे या तो है सियाने री सेवा करी इज्जत मान सम्मान करो सियाने रा माँ बाप रा तो है मतलब तीर्थ यात्रा के असो तुंदी कंप्लीट बुझ गया कदी कसी रा बुरा मत करा अपने कर्मा जो किया सो जरूर खरे रखा श्रोतों माँ बाप री सेवा जरूर करा सियाने भी सेवा जरूर करा जरूरतमंद रे मदद किया अगर तो है तस लाइक बनू रे हिंद भगवान है तो जरूरतमंद रे मदद किया सो जरूर करा श्रोतों ए जमीन ए जायदाद ए पैसा ए ढेला ए गड्डी ए घर ए बंगला ये सब इटे रहे गाने श्रोतों सो गया सुसोगे गाने न तो सो गाना सिर्फ इन दे अच्छे कर्मा रा फल सो सो गे गाना शोतों बाकी ये सिर्फ मुँह माया किया सो इस लोक तक इस घोड़े तक गया ऐसा धरती तक किया सो सीमित था असलियत या कि ना सोगे कुछ छूरत हो ना सोगे कुछ गाना हा हाँ लेकिन सोगे एक चीज जरूर गाणिया सो है इन दे अच्छे कर्म और बुरे कर्म मेन इनके अच्छे गाने बुरे भी सोगे गाने ने ता हूँ सचिन कपूर ले लेनू तो सुतो इजाजत हंसते रहे मुस्कुरेंदे रहे और आरजे सचिन कपूर कपूर जो ही हुंदे रहे शोतो अभी मुल दिन तुस हो गए लाइव सोमवार जो तीन दिन तो है खुश रहन हंसते रहन मुस्कुरेंदे रहन और सोमवार जो मुल दिन फिर तुसु सब बिसोगे नमस्ते धर्मशाला।

0: नमस्कार
1: बच्चन साहब, आइए आइए आइए।
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए।
1: डोनेशन? जरूर जरूर, कहाँ है डोनेशन बॉक्स?
2: ये रहा, मिल गया मैं डोनेशन।
0: ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान।

0: समझ गए?
1: हाँ हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फते आप पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए नहीं इस झंझट में?
1: आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: Yeah, sure.
1: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना। स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना जिसके

0: साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
1: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
0: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो उसे कैसे भूल जाए?
1: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
0: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
1: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
0: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
1: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
2: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
3: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
4: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
5: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
3: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर मुंह बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
4: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
6: ये क्या कर रही है?
7: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
6: ये केले के छिलके की?
8: ओह नो,
7: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
6: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
7: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ। श्रोताओं, अब से लेके 8 बजे तक रहेंगे आपके साथ। श्रोताओं, करेंगे आपके साथ बातचीत, जानकारियाँ साझा करेंगे और साथ ही साथ सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे से फिल्मी गीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए बता दें आपको इस समय क्या है धर्मशाला का तापमान। श्रोताओं, 14 डिग्री सेल्सियस इस समय धर्मशाला का तापमान है और वातावरण में नमी है 78%। जी हाँ, आज के मौसम की, आज के दिन के मौसम की बात करें तो श्रोताओं, आज दिन जो है वो बहुत खुशनुमा बीता, ना ही बारिश हुई और ना ही पिछले दिनों की तरह हमें बारिश की परेशानी झेलनी पड़ी। और जिस तरह से कल तक ठंड बढ़ गई थी, उस ठंड से भी थोड़ी सी राहत हमें मिली है। और वैसे तो कल ही हमने सैर का जो पर्व है वो मनाया है और हमारे बड़े बुजुर्गों की ये मान्यताएं हैं कि सैर शुरू होते ही शीत ऋतु का आगमन जो है वो भी हो जाता है, और हल्का हल्का आगमन हो भी गया था। और बीते कल की बात करें तो पहाड़ों पे हल्की फुल्की बर्फबारी जो है वो हुई थी और उसी की वजह से हल्की हल्की शीत लहर जो है वो हम लोगों ने यहाँ तक महसूस की। चलिए, आगे आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि बर्फबारी और अधिक हो, क्योंकि बर्फ़ होगी तभी हम लोगों का जो है जीवन यापन है वो मैदानी क्षेत्रों में अच्छे से होगा। और श्रोताओं, मौसम की बात हो गई और अब करते हैं कार्यक्रम की आगे की बात। कार्यक्रम में आगे सबसे पहले सुनवा रहे हैं आपको ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत। आनंद उठाइए इस प्यारे से गीत का और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला। और श्रोताओं, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में आप समय है आपके साथ विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। जिंदगी में ठहराव आए तो घबराइए मत, कभी कभी ठहरना भी हमें अगली बड़ी उड़ान के लिए तैयार करता है। आज का विचार एक बार फिर से दोहरा रहे हैं श्रोताओं कि जिंदगी में ठहराव आए तो घबराइए मत, कभी कभी ठहरना भी हमें अगली बड़ी उड़ान के लिए तैयार करता है। जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी में हम सभी बहुत से सपने लिए होते हैं, किसी को क्या हासिल करना है, किसी को क्या अचीव करना है, और हम उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार हमारी वो कोशिश नाकाम जाती है, हमारी मेहनत भी बेकार चली जाती है और हम हार मान लेते हैं, घबराते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और अपने सपनों को, अरमानों को वहीं पे त्याग देते हैं। जबकि जिंदगी में ऐसे मौके हमें जो है और अधिक मजबूत और परिपक्व करने के लिए आते हैं, ताकि हम और अधिक कोशिश करें अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए। इसीलिए आज के विचार में भी कहा गया है कि ठहराव अगर जिंदगी में आए तो ठहराव जिंदगी में रुकने का नाम नहीं है, बल्कि वो ठहरना हमें और भी ऊंची उड़ान के लिए तैयार करने के लिए हमारी ज़िंदगी में आता है। इसलिए ज़िंदगी में कभी ठहराव आए, कभी किसी काम में रुकावट आए, तो ये मत सोचिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये सोचिए कि हमें और अधिक ऊंचाई पे जाने के लिए ईश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और मेरे साथ इस समय आप कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत सुनवाने का। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 MHz पर और बातचीत भी होगी, जानकारियां भी साझा होंगी, साथ ही साथ प्यारे प्यारे गीतों का साथ भी आपके साथ होगा। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं आज है 18 सितंबर। जी हाँ, 18 सितंबर का दिन बहुत ख़ास है और ना सिर्फ आज का दिन बल्कि हर दिन अपने में ख़ास होता है। हर दिन श्रोताओं किसी न किसी का जन्मदिन होता है, हर दिन किसी न किसी के लिए कोई नया संदेश लेकर के आता है, हर दिन किसी न किसी के लिए कुछ नए प्रयोग लेकर के आता है, किसी की ज़िंदगी में उजाला लेकर के आता है, इसलिए हर दिन अपने आप में खास होता है। लेकिन आज के दिन क्या कुछ खास है, क्या कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, उसके बारे में भी आपके साथ हम बात ज़रूर करेंगे। तो उन्हीं दिनों में से जो खास दिन है वो आपको बता दें श्रोताओं, आज विश्व बांस दिवस है, जिसके बारे में हम सभी सुबह सुन चुके हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी है, विश्व जल निगरानी दिवस और कायरोप्रैक्टर फाउंडर डे भी आज के दिन मनाया जाता है। कार्यक्रम में जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे कोशिश करेंगे कि ये जो दिन है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताएं हम। और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो आज यानी 18 सितंबर के दिन ये दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये इसकी जो कह सकते हैं हम हेडिंग है, इससे ही जो है ये स्पष्ट हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी कि वेतन जो है वो समान नहीं होता, उसे हर किसी के लिए समान रूप से वितरित करने के लिए आज का ये दिन है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस ये मनाया जाता है। क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों विश्व में ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ऐसा लगा कि सभी को समान वेतन होना चाहिए, इसके बारे में कार्यक्रम में आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। श्रोताओं आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, में कार्यक्रम में अब रुख करते हैं जानकारियों की ओर।

पूछो तो एक जरूरी सूचना। सहायक अभियंता विद्युत अभिषेक कटोच ने जानकारी दी कि कंडक्टर को केवल में बदलने और जरूरी रखरखाव हेतु 19 सितंबर को यानी कल डिपो बाजार, लोअर डिपो बाजार, सिविल लाइन के आसपास के क्षेत्रों में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर ये कार्य उससे अगले दिन किया जाएगा। श्रोता, इस जरूरी सूचना के साथ साथ अब एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दुर्वेश्वर महादेव डल झील मेले के उपलक्ष्य में शुक्रवार को एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशे के विरुद्ध जन जागरूकता का संदेश देने के लिए वाकथॉन का आयोजन किया गया। वाकथॉन का नेतृत्व उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने किया। टेंगल मोड़ से डल झील तक आयोजित इस वाकथॉन में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ साथ

अपने तथा आसपास के लोगों और परिवारों को और समाज के अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान को प्रभावी बनाने में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। श्रोताओं, ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपको कार्यक्रम का एक और अगला प्यारा सा गीत सुनवाने का। तो लीजिए आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले गीत का।

श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ धर्मशाला के साथ साथ इस समय हमें 88.4 MHz ढटवाल की आवाज़ हमीरपुर में भी सुना जा रहा है। श्रोताओ कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज समान वेतन के बारे में। जी हाँ, आज है 18 सितंबर श्रोताओं, और आज अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस जो है वो विश्व भर में मनाया जाता है। एक समान काम के लिए एक समान वेतन, इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। आखिर समान वेतन का मतलब है क्या? श्रोताओ सीधी सी बात है, अगर दो लोग समान एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, एक जैसा समय दे रहे हैं किसी काम को, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनके महिला या पुरुष होने की वजह से उनके वेतन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक जैसे काम को करने के लिए दोनों महिला और पुरुष एक समान मेहनत कर रहे हैं, एक समान समय दे रहे हैं, एक समान मेहनत कर रहे हैं, तो उनका जो मेहनताना है वो भी एक समान होना चाहिए, ना कि पुरुष को अधिक वेतन और महिला को कम वेतन। काम की गुणवत्ता और जिम्मेदारी का मूल्यांकन काम के आधार पर होना चाहिए, ना कि लिंग के आधार पर। समान वेतन सिर्फ पैसों की ही बात नहीं है श्रोताओं, ये समान अवसर और बराबरी की भी बात है। जब किसी महिला को उसकी मेहनत और योग्यता के अनुसार उचित वेतन मिलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका परिवार मजबूत होता है और समाज भी आगे बढ़ता है। तो श्रोताओं आज इस दिन हम एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात जरूर याद रखें, बराबर मेहनत का सम्मान बराबर होना चाहिए और बराबर काम की कीमत भी बराबर होनी चाहिए। श्रोताओ यही है समानता की असली शुरुआत। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, इस समय आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन के माध्यम से। कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला, और अब श्रोताओ कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: देखी क्या मेरे को?
1: अरे नहीं देखा।
0: अरे बोलना, मेरे को देखी कि नहीं?
1: हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा।
0: उसने देखा तो तेरा क्या?

0: माल लोड हो गया है, चलें क्या?
1: तो जाने का?
0: हाँ, नहीं रुकने का मेरे को, चल जाते हैं ना।
1: बात सुन, मैं समझ गया तेरे को।
2: श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में गीत आप सुन रहे थे, बहुत ही प्यारा सा गीत था, लेकिन कई बार कुछ टेक्निकल त्रुटियां रह जाती हैं, जाने अनजाने हमसे भी। गीत का आनंद तभी आता है जब गीत में संगीत हो, जब गीत में डायलॉग हो, कुछ ऐसे डायलॉग जो मेल खाते हों गीत से, लयबद्ध तरीके से हो, तो फिर भी वो सुनने में अच्छे लगते हैं। कई बार गीत को और भी अधिक वो सुंदर बना देते हैं, लेकिन कई बार जब हम सिर्फ संगीत महसूस करना चाहते हैं और बीच में इस तरह से डायलॉग आ जाएं, तो वो खैर बुरे तो नहीं लगते, लेकिन एक मूड बना होता है गानों का, एक टेस्ट होता है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और अगर आप लोगों को भी ये गीत सुन करके ऐसा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि गीत के बीच में किस तरह से डायलॉग बाजी की गई थी इसके बारे में कई बार हमें भी नहीं पता होता, तो इसके लिए अपने श्रोताओं से हम माफ़ी चाहते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब श्रोताओं के साथ करेंगे हम बातचीत। जी हाँ श्रोताओं, बातचीत यूं ही नहीं करेंगे, उस बातचीत का भी कुछ अर्थ होगा। और वो बातचीत है कल के दिन से, यानी कल राधा अष्टमी का जो पावन स्नान है वो भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और ये जो पावन स्नान होता है इसको हम स्थानीय भाषा में कहें तो नौण कहते हैं, नौण यानी के नहाना, और नहाना भी कहाँ, डल झील में या फिर मणिमहेश की पावन झील में। और पिछले साल की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो पिछले साल कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं हो गई थी कि हमारा जो ये पावन स्नान था उसके लिए जो एक उपयुक्त समय निर्धारित होता है प्रकृति की ओर से, उस समय तक कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं नहा पाया था, और ये बड़ी दुखद और हैरानी वाली भी बात थी। लेकिन इस बार कुदरत मेहरबान रही और लोगों ने जाना शुरू किया और सही समय पर वो पावन स्नान कर भी पाए, और कुछ लोग समय से पहले भी कर आए हैं। और इसमें ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि उसी दिन स्नान करना होता है, उसके कुछ दिन पहले ही लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मणिमहेश की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। और आज मुझे किसी काम से, या यूँ कहें कि चंबा की ओर जाने का अवसर मिला, तो सुबह सुबह जब मैं निकली, तो शायद इन दिनों में मैं पहली बार निकली हूँ चंबा भरमौर की तरफ, और हमारा जो द्रम्मण का इलाका है उससे जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर निकले तो वहाँ पे पंडाल लगे थे और लंगर सेवा हो रही थी जो भी श्रद्धालु जा रहे थे उनके लिए। और उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नोट करके वो खाना खिला रहे हैं या उनकी सेवा कर रहे हैं, बल्कि जो भी गाड़ी, जो भी बाइक स्कूटर गाड़ी रास्ते से गुजर रहा था, उन सब को हाथ जोड़ करके वो बड़े सेवा भाव के साथ रोक रहे थे, उन्हें खाना खिला रहे थे। हम जैसे लोग जो थोड़ी जल्दी में थे वो उन्हें हाथ जोड़ करके आगे निकल रहे थे, लेकिन बहुत से लोग रुक रहे थे, लंगर का प्रसाद खा रहे थे और आगे जा रहे थे। और ये चीज़ मुझे बहुत ही दिल को छूने वाली लगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ शायद पहली बार देखी अपनी अब तक की ज़िंदगी में। और वो सिर्फ एक लंगर नहीं था, द्रम्मण के शुरू से ही द्रमनाल वगैरह जो जगह हैं स्थानीय लोगों को पता होगा, थुलेल वगैरह से होते हुए जैसे जैसे हम 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ रहे थे, हर जगह ये पंडाल लगे हुए थे, और कहीं पे लोग भोले बाबा के भजन कीर्तन भी कर रहे थे बड़ी श्रद्धा के साथ, और खाना, फल फ्रूट, चाय, जो भी आने जाने वाले यात्रियों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है खाने पीने से संबंधित, वो सब कुछ उन पंडालों में रखा हुआ था, और सबको बड़े प्यार से ये लोग खाना खिला रहे थे। श्रोताओं, मेरी बात थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, सुनने वाली बात है, सुन लीजिए। और हैरानी की बात ये भी थी कि सभी लोग बड़े प्यार से खाना खिला रहे थे, और मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जब तीन चार पंडालों से मैं गुजरी तो उत्सुकता हुई कि पढ़ूं क्या है। तो अधिकतर पंडाल जो थे उनके बाहर लिखा था कि सेवा पठानकोट वाले ये भाई। थोड़ी देर के बाद अगला देखा तो उसमें भी लिखा था पठानकोट से ये भाई, उनके द्वारा लगाया गया लंगर। हिमाचल के भी थे, ऐसी बात नहीं है, हिमाचल वालों ने भी लंगर लगाए थे और वो भी सेवा से सबको खाना खिला रहे थे। लेकिन अगर तुलना की जाए तो ज़्यादातर पंजाब के लोग जो थे वो वहाँ पे लंगर लगा रहे थे और वो सभी श्रद्धालुओं को, आने जाने वालों को भी इवन रोक करके वो खाने के लिए आग्रह कर रहे थे। तो श्रोताओं, इसे श्रद्धा कहें, इंसानियत कहें या मानवता कहें, ये सब कुछ का मिला जुला संगम मुझे लगा। और वापसी में भी मैं वही देखते देखते आ रही थी। वापसी में मुझे स्टूडियो पहुंचने की भी जल्दी थी और उत्सुकता भी थी कि सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था तो शाम का क्या होगा। शाम का नज़ारा आपको बताएंगे, लेकिन बातें बहुत हो गई हैं और आप कहेंगे कि ये बातें ही करते रहेंगे तो गीत कब सुनाएंगे। इसलिए अब चलते हैं कार्यक्रम में आगे एक प्यारे से गीत की ओर, और गीत के बाद आपको शाम का जो नज़ारा था वो भी बताएंगे। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला से मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और कार्यक्रम में अब इस प्यारे से गीत का आनंद उठाइए, उसके बाद आपको फिर से लिए चलेंगे लंगर की सेवा में।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि जो श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको किस तरह से लंगर सेवा वाले रोककर उनका आदर सत्कार करके उन्हें खाना खिला रहे हैं और फिर आगे अगले पड़ाव की ओर भेज रहे हैं। शाम के समय जब हम वापस आ रहे थे तो उन्हीं पंडालों में भगवान भोलेनाथ की मूर्तियां सजी हुई थी और दरबार पे बैठे हुए थे भक्तजन, जो कि धीमे धीमे गीतों के साथ, भगवान भोले के गीतों के साथ उनको रिझाने की कोशिश कर रहे थे। और एक जगह तो हल्का सा रुक करके सुनने का भी मन हुआ श्रोताओं, क्योंकि बहुत ही प्यारा संगीत वहाँ पे बज रहा था। जगह चलते चलते मुझे याद नहीं कि कहाँ जैसे था, लेकिन बहुत ही प्यारा सा जो संगीतमय माहौल वहाँ पे बना हुआ था, भगवान भोलेनाथ के भजन कीर्तन वहाँ पे चल रहा था। और हमारा भी मन किया कि थोड़ी देर रुके भी, और उस भजन संध्या का हमने थोड़ा सा आनंद भी उठाया। पर क्योंकि आगे हमें भी पहुंचना था अपने गंतव्य की ओर, तो हम फिर निकल आए वहां से। लेकिन आज का ये नज़ारा वाकई में श्रोताओं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा, और मुझे लगा कि आप सब लोग जानते भी होंगे या कोई होगा मेरी तरह जिसने अभी तक ये ना देखा हो, तो उनके साथ ये साझा करने का मेरा मन किया, तो मैंने रेडियो गुंजन के माध्यम से आप लोगों के साथ ये साझा किया। और श्रोताओं, जिस पावन स्नान की हम बात कर रहे हैं जी, राधा अष्टमी के दिन यानी कल वो पावन स्नान मणिमहेश झील में डुबकी लगेगी, और इस पावन स्नान का जो है वो आनंद श्रद्धालु उठाएंगे। और जो मणिमहेश नहीं जा पाते हैं वो लोग डल झील, जी हाँ, दुर्वेश्वर महादेव, जिसके बारे में हमने कुछ समय पहले आपके साथ एक जानकारी भी साझा की, वहाँ पर डल झील में भी बहुत से लोग आते हैं जो श्रद्धा भाव के साथ डुबकी लगाते हैं। डल झील के साथ साथ भागसु नाग का जो हमारा पावन मंदिर है, उसके जो हम कह सकते हैं पूल है, वहाँ पे जो नहाने की स्थान है, वहाँ भी है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। और बहुत से लोग जो दूर दूर से आते हैं, जो मणिमहेश नहीं पहुँच सकते, वो डल झील में आकर के और भागसुनाग मंदिर का जो तालाब है उसमें नहा करके इस पावन स्नान का जो है वो लुत्फ उठाते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएँ जो है वो पूरी करवाते हैं। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में बातों के साथ साथ आपका मनोरंजन भी हम करवाएंगे। अब लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर, बने रहिए यूं ही 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। शाम के 7 बजने को हैं और अब से कुछ ही देर बाद शाम 7 बजे आप सुनेंगे समाचार। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। कार्यक्रम जारी रहेगा श्रोताओं, 7:05 पर भी आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाबल मंडप जल डमन मद से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के इरकुत पोत और भारतीय युद्ध पोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनकी सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और HTT-40 सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में उपस्थित थे। HAL ने भारतीय वायुसेना को दो हल्के विमान LCA और तेजस, इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने विमान का नाम अंकुर रखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहाड़ जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और इस कार्यक्रम को 88.4 मेगाहर्ट्ज ढटवाल की आवाज़ हमीरपुर में भी हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हमें सुन रहे हैं। हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और श्रोताओं, अब अंतराल के बाद लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये जानकारी संबंधित है विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से। सहायक अभियंता विद्युत लोकेश चौधरी ने जानकारी दी है कि पुरानी LT विद्युत लाइनों को नई विद्युत लाइनों से बदलने और सामान्य रखरखाव हेतु 20 सितंबर यानी परसों DTR 250 KVM मसरेहड़ तथा 100 KVR मसरेहड़ बंद रहने के कारण मसरेहड़ और साथ लगते क्षेत्रों में प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने जैसी स्थिति में ये कार्य अगले दिन किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये जानकारी भी अपने श्रोताओं के साथ हमने साझा की कि ताकि आप लोग जिस दिन बिजली जाए उस दिन परेशान ना हो, एक दिन पहले ही आप जो है वो अवेयर रहें कि अगले दिन विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी और विद्युत आपूर्ति 20 सितंबर को बाधित रहेगी मसरेहड़ और मसरेहड़ के साथ लगते जो हमारे स्थान है वहाँ पर। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोतो बात करते हैं फिर से समान वेतन के बारे में। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस आज मनाया जा रहा है। क्यों आवश्यकता पड़ी श्रोताओं इस दिन को मनाने की? क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में आज भी समान या समान मूल्य के काम के लिए महिलाओं और पुरुषों को बराबर वेतन जो है वो नहीं मिलता है। साधारण शब्दों में अगर कहें तो लैंगिक वेतन अंतर, कई क्षेत्रों में महिलाओं की औसत कमाई पुरुषों से कम रही है और हमेशा ही कम रही है। काम के अवसरों में असमानता, महिलाओं की कुछ नौकरियां और उच्च पदों तक पहुंच ऐतिहासिक रूप से कम ही रही है। घर और परिवार की देखभाल जैसे कामों का बड़ा हिस्सा महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसका अक्सर आर्थिक मूल्य उन्हें मिलता ही नहीं। कुछ स्थानों पर यह धारणा रहती है कि पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं या काम का मूल्य अलग अलग है। सिर्फ कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, समान वेतन के अधिकार के बारे में जागरूकता और उसके प्रभावी पालन की भी आवश्यकता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में मान्यता दी, ताकि समान काम के लिए समान पारिश्रमिक के सिद्धांत को बढ़ावा दिया जा सके और वेतन में लैंगिक असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। दोस्तों, समान वेतन सिर्फ पैसों की बराबरी नहीं बल्कि मेहनत, सम्मान और अवसर की बराबरी का भी नाम है। इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब एक और प्यारा सा गीत, और ये गीत उसी दौर का है। जी हाँ, 90 के दशक का गीत कार्यक्रम में आपको आगे सुनवा रहे हैं श्रोताओं। और बाजीगर फिल्म का गीत है, आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार और शायद बहुत समय हो गया होगा बहुत से लोगों को सुने हुए, इसीलिए आपको सुनवा रहे हैं बाजीगर फिल्म का ये प्यारा सा गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए यूं ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय है आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाने का, तो आइए सुनते हैं ये छोटी सी कहानी।

शुरू कहानी का नाम कहें या शीर्षक कहें, वो कुछ इस तरह से है कि अपना मुकाबला खुद से ही। श्रोताओं, एक लड़की थी एक गांव में, गांव की पृष्ठभूमि से है इसलिए गांव की ही बात करते हैं। एक गांव में एक लड़की थी जिसका सपना था कि वो संगीत सीखे, संगीत यानी वो गाना गाए और गाना गाना सीखे। नेचुरली यानी एक प्राकृतिक जो कला होती है वो उसमें थी थोड़ी बहुत, और सखियों ने सहेलियों ने उसे सराहा भी था और उसे कहा था कि तू अच्छा गाती है और अच्छा गा सकती है। और सहेलियों की बात सुन करके उसका जो उत्साह है वो और जागा। वो खुद से भी करना चाहती थी लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने और जब सखियों सहेलियों ने भी कहा तो उसका ये सपना और अधिक मजबूत हो गया और उसने अपने जीवन में गायकी को, या यूं कहें कि संगीत को, अपना सपना बना लिया। वो गाती, गुनगुनाती, सुनाती और सखियां सहेलियां कहती कि बहुत अच्छा, और उसे भी लगता अच्छा गा रही है। लेकिन जब भी वो किसी फेमस सिंगर को सुनती तो उसे लगता कि मैं उसके जैसा अच्छा नहीं गा रही हूँ, इसलिए मेरी गायकी में वो बात नहीं है, मुझे गायकी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपने सपने को छोड़ने की बात करती या सोचती तो उसे लगता कि अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा है, अगर इस सपने को छोड़ दूंगी तो शायद जिंदगी में मेरे पास और कोई सपना नहीं रहेगा। फिर मन को इकट्ठा करके उसने अपने उस सपने को टूटने नहीं दिया। उसने किसी महान सिंगर से नहीं बल्कि अपनी गायकी को अपनी ही गायकी के साथ कंपेयर करना शुरू किया। उसने एक डायरी ली, उसमें उन शब्दों को, उन लाइनों को लिखना शुरू किया और अपनी आवाज़ को, उन चंद लाइनों को रिकॉर्ड करना शुरू किया जिन्हें वो गाती थी, गुनगुनाती थी। फिर कुछ समय के बाद उन्हीं लाइनों को अभ्यास करके उसने जब गाया तो उसने देखा कि पहले के मुकाबले अभी उसकी गायकी में जो है वो सुधार हुआ है। ऐसे करते करते उसने किसी भी तरह के कंपटीशन में भाग नहीं लिया, किसी बड़े महान गायक के साथ अपनी तुलना नहीं की, सिर्फ अपनी गायकी पे फोकस रखा। उसी तरह से वो अभ्यास करती रही, रिकॉर्ड करती रही।

हर दिन नई रिकॉर्डिंग, हर दिन नया गाना, वो कुछ बोल गाती, गुनगुनाती और सुनती और तुलना करती, खुद की तुलना खुद के साथ ही, किसी बड़े महान सिंगर के साथ नहीं। लगभग एक साल के इस अभ्यास के बाद उसने पाया कि एक साल पहले जो उसने रिकॉर्डिंग की थी या रिकॉर्डिंग्स की थी दिन प्रतिदिन, उस समय की रिकॉर्डिंग्स में और एक साल के बाद की गई उसकी रिकॉर्डिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसे खुद ही महसूस हो रहा था कि उसने एक साल तक जो कोशिश की है, जो मेहनत की है, जो अभ्यास किया है और उसके बाद जो उसने अपने गाने रिकॉर्ड किए हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। वो बहुत ही मीठे, मधुर और सुरीले गाने थे और उस दिन के बाद से उसने अपने अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस किया और उसे लगा कि मैं पहले से बेहतर, बहुत बेहतर और इसी तरह से अगर करती गई तो और भी ज़्यादा बेहतर जो है वो मैं कर सकती हूँ और करती जा रही हूँ। जी हाँ श्रोताओं, यही थी हमारी आज की कहानी और कहानी सुन करके आपको ये पता चल ही गया होगा कि हम अक्सर अपनी तुलना जो है वो दूसरों से करते हैं। हमारे पास कितना है हम उस पे नज़र ना रख करके ये देखते हैं कि दूसरे वाले के पास कितना है, हमारे पास भी उतना ही हो जाए। हमारे पास ईश्वर ने जो हमें दिया होता है उसमें हमें संतुष्टि रखनी चाहिए और जितना है उसे हम और तराशें और निखारें और एक ना एक दिन हम उस इंसान से भी बेहतर कर सकते हैं जिसके जैसा करने का या जिसके जैसे बनने का हम सपना देखते हैं। तो श्रोताओं, आज की कहानी हमें यही संदेश देती है कि अपनी तुलना जो है कभी किसी के साथ मत कीजिए। जब हम तुलना करते हैं तो दुख ही मिलता है। अपनी तुलना खुद के साथ ही कीजिए क्योंकि हमें ही पता होता है कि हम कितने पानी में हैं और हम जब मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं तो हमारी कोशिशें, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाती, वो रंग ज़रूर लाते हैं। ठीक आज की कहानी की इस सिंगर की तरह जो अपनी गायकी को निखार पाई, संवार पाई, सुधार पाई। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और मेरे साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं आप इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला। अब कहानी यहीं तक, अब चलते हैं श्रोताओं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और लीजिए अब सुनिए गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओ कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद यानी 9:45 पर 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला यूं ही जारी रहेगा 7:55 पर भी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें रोजगार मेले में विभिन्न विभागों में नव नियुक्त 51,000 से अधिक कर्मियों को कल सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना को SJVNL से वापस लेगी राज्य सरकार। नादौन विधानसभा क्षेत्र में सधोड़ा पत्तन में ब्यास नदी पर 31 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा डबल लेन स्पैन पुल, 15 पंचायतों के लोगों को मिलेगा लाभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, सुक्खू सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप, भ्रष्टाचार चरम पर। और नशा मुक्त अभियान को लेकर शिमला में वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित, मीडिया से अभियान को सफल बनाने की अपील। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नए नियुक्त कर्मी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना को SJVNL से वापस लेगी और इसके लिए 800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वे आज नादौन विधानसभा क्षेत्र के सधोड़ा पत्तन में ब्यास नदी पर बड़ा और सिल्ह के बीच 31 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 250 मीटर डबल लेन स्पैन पुल व फुटपाथ सधोड़ा पत्तन पुल के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल से नादौन और ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्रों की 15 पंचायतों के 30,000 से अधिक लोगों के अलावा सुजानपुर क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित होंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास को प्राथमिकता दी है, लेकिन भाजपा को ये नजर नहीं आता।
1: ये पूरे नहीं विकासात्मक कार्य पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है 5 गुटों में बटे हुए हैं। उनको ये लगता है कि ये गुट आगे ना बढ़ जाए, विकास तो उनको याद नहीं होता, और आने वाले समय में विकास और तेज नजर आएगा। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
0: मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को पिछली बार से भी कम सीटें मिलेंगी। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश की संपदा को लुटाने के आरोप भी लगाए।
1: उनके 16 MLA चुनाव हार रहे हैं और पिछली बार से भी BJP की कम सीटें आएगी, क्योंकि उन्होंने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। प्रदेश की संपदा को लूटा है, हमने बचाया है। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल से 401 करोड़ रुपए लिए, JSW से 150 करोड़ रुपए लिया, शराब के ठेकों से 450 करोड़ रुपया लिया, किशाऊ पाल से 1200-1500 करोड़ रुपया लिया। डबल इंजन की सरकार होती तो किशाऊ वाला समझौता नहीं होता। इन्होंने हिमकेयर का घोटाला करवाया, इन्होंने जमीन घोटाले करवाए। कौन सा ऐसी चीज है जो इन्होंने नहीं की है? जनता क्यों वोट डालेगी? हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार का आरोप बता दिए।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 3.5 साल के कार्यकाल में कोई नई योजना नहीं बनाई, जबकि कर्ज लेने का नया रिकॉर्ड ही बनाया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि बदले की भावना से विकास कार्यों को बंद करने और तालाबंदी के लिए जानी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने झूठी गारंटियों, किशाऊ परियोजना का भ्रामक श्रेय और बढ़ते कर्ज को लेकर भी सुक्खू सरकार को घेरा। जयराम ठाकुर ने कहा कि किशाऊ परियोजना 6 राज्यों की सहमति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद पूरी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री बिना वजह अपना गुणगान कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नगरोटा बगवां बस स्टैंड से 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक बस को नगरोटा बगवां से माता चिंतपूर्णी मंदिर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर स्थानीय जनता के साथ साथ बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यटकों व श्रद्धालुओं को भी बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि राष्ट्रमंडल स्वतंत्र और संप्रभ देशों का एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग, सुशासन, आर्थिक विकास, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 6 दिवसीय 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के समापन अवसर पर उन्होंने राष्ट्रमंडल के लिए नेतृत्व के नए अवसर, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के लिए संसदीय कार्यवाही विषय पर अपने संबोधन में ये विचार व्यक्त किए। केंद्रीय गृह और सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान 2029 को लेकर आज शिमला में मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक राजकुमार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक अमनजीत सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 2026 से 2029 तक 3 साल का टाइम बॉन्ड रोडमैप तैयार किया गया है। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक अमनजीत सिंह ने बताया कि अभियान के तहत 4 मुख्य पिलर और 200 एक्शन प्वाइंट तैयार किए गए हैं। इनमें इंटेलिजेंस और ऑपरेशन बेस्ड कार्रवाई, केमिकल और सिंथेटिक ड्रग्स पर कंट्रोल, डिमांड और नुकसान में कमी और क्षमता निर्माण व समन्वय है।
5: उसके 4 पिलर्स हैं। जो पहला पिलर है वो इन्फोर्समेंट रिलेटेड है, तो इसमें नेटवर्क्स को हम तोड़ेंगे, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करेंगे। और जो कार्टेल्स हैं, जो ऑपरेशनलाइज हैं बाहर से, तो हम 100 फ्यूजिटिव्स को इंडिया वापस लेके आएंगे। और ये कार्टेल्स के अगेंस्ट हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके, जो भी इन्होंने इलिसिट ड्रग मनी जोड़ के अपने प्रॉपर्टीज बनाई है, इनको सीज, फ्रीज और कॉन्फिस्केट करेंगे। दूसरा पिलर सिंथेटिक ड्रग्स को लेके है, उसके अंदर हम जो क्लैन लैब्स है उसको बस्ट करेंगे। ऐसे ही पिलर 3 है हार्म रिडक्शन और अवेयरनेस। पिलर 4 कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, उसके अंदर हम ANTFs को स्ट्रेंथन करेंगे, फुली इक्विप करेंगे, 100% सेंटर फंडिंग रहेगी एंटी नारकोटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
0: इस दौरान अतिरिक्त महानिदेशक राजकुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में नशा मुक्त भारत अभियान महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने मीडिया से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है।
6: माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसमें नशा मुक्त

0: भारत जो है 2029 तक, वो एक बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसे हासिल करके ना केवल हम अपने देश को नशा मुक्त बनाएंगे, युवा पीढ़ी को इस बुराई से मुक्ति दिलाएंगे, बल्कि एक विकसित भारत की, ये जो नशा मुक्त भारत है, विकसित भारत 2047 का एक मुख्य आधार होगा। तो आप सबसे मेरी विनती है कि मीडिया के माध्यम से आप हमारे नशा मुक्त भारत अभियान के इस मिशन को, इस विजन को जन जन तक पहुँचाएं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर शुरू किए गए सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष श्रृंखला के माध्यम से आज हम बात कर रहे हैं मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली के बारे में। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 में गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से शुरू किए गए वैश्विक मिशन लाइफ के माध्यम से भारत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं, बल्कि हर नागरिक की सहभागिता से ही एक हरित और सुरक्षित भविष्य का निर्माण संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाता है, जिसमें हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकता है।
2: मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ता, उनका बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक उसका विस्तार कर रहा है, जिससे हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है। मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है कि छोटे छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। हमें प्रेरित करता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। मिशन लाइफ ये मानता कि अपनी लाइफस्टाइल बदलाव करके एनवायरनमेंट की रक्षा की जा सकती।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें रोजगार मेले में विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक कर्मियों को कल सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना को SJVNL से वापस लेगी राज्य सरकार। नादौन विधानसभा क्षेत्र में सधोड़ा पत्तन में ब्यास नदी पर 31 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा डबल लेन स्पैन पुल, 15 पंचायतों के लोगों को मिलेगा लाभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, सुक्खू सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप, भ्रष्टाचार चरम पर। और नशा मुक्त अभियान को लेकर शिमला में वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित, मीडिया से अभियान को सफल बनाने की अपील। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
3: श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अब आपसे विदा लेने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि कल है राधा अष्टमी का पावन स्नान। अगर आप मणिमहेश नहीं जा पाए या जा पाते हैं तो डल झील में डुबकी लगाइए, भागसुनाग में डुबकी लगाइए, और अगर वहाँ पे भी नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही सच्चे मन से वो जो निर्धारित समय है हमारे पंचांग के हिसाब से, उसमें आप ज़रूर स्नान कीजिए। अपने मन को साफ, स्वच्छ और पवित्र रखिए। और इसी के साथ आप सभी को राधाअष्टमी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर से रेडियो गुंजन के माध्यम से। तब तक बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
4: कभी मैं हूर हूर कहता हूं।

0: नमस्कार।
1: बच्चन साहब आइए आइए।
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए।
1: डोनेशन? जरूर जरूर, कहाँ है डोनेशन बॉक्स?
2: ये रहा, मिल गया हमें डोनेशन। ये
0: छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान।
3: स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ।

0: समझ गए?
1: समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: पुलिस पुलिस कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: या श्योर।
1: आइए सर आप यही। रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाएं?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
10: ये क्या कर रही है?
11: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
10: ये केले के छिलके की?
12: Oh, no.
11: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
10: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा, और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
11: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

0: नमस्कार।
1: बच्चन साहब आइए आइए।
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए।
1: डोनेशन? जरूर जरूर, कहाँ है डोनेशन बॉक्स?
2: ये रहा।
0: ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान।
3: स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ।

0: समझ गए?
1: हाँ, समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या?
3: असली नोट?
4: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: पुलिस पुलिस कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए नहीं झंझट में?
1: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर, ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: या श्योर।
1: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाएं?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
10: ये क्या कर रही है?
11: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
10: ये केले के छिलके की।
12: Oh, no.
11: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
10: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
11: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: नमस्कार।
1: बच्चन साहब आइए आइए।
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए।
1: डोनेशन? जरूर जरूर, कहाँ है डोनेशन बॉक्स?
2: ये रहा।
0: ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान।
3: स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ। प्लास्टिक छोड़ झोला लिया,

0: समझ गए?
1: समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: या श्योर।
1: आइए सर, आप यही। रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाएं?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
10: ये क्या कर रही है?
11: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
10: ये केले के छिलके की।
12: Oh, no.
11: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
10: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
11: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।